0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: वायलिन और सारंगी के बाद गज वाला वाद्य इसराज प्रचलित है। इसराज का यही राज है कि यह कब बना, कहां बना और किसने बनाया, यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों का मत है कि यह सारंगी और सितार का मिश्रण है। कुछ गुणियों का मानना है कि यह सारिंदा और सारंगी का मिश्रण है। कुछ संगीतज्ञ इसकी उत्पत्ति का आधार केवल सारंगी मानते हैं। जो संगीतज्ञ सारंगी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, उनका इस संबंध में कहना है कि मुगल काल में महिलाएं जब हरम में गायन किया करती थी, तब उन्हें सारंगी की संगति उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारंगी वादक अधिकतर पुरुष ही हुआ करते थे। महिलाएं सारंगी बजाने में असमर्थ हुआ करती थी, क्योंकि सारंगी यह वादन में कठिन ही नहीं बल्कि वह नाखूनों की सुंदरता को भी नष्ट करती थी। इसीलिए सारंगी के ऊपरी भाग को कुछ लंबा कर इसमें पर्दे लगाए गए। इसराज की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि सारंगी सामान्यतः कोठों पर बजाई जाती थी। रावण हत्था, सारिंदा तथा चिकारी आदि गजवाद्य लोक संगीत में प्रयुक्त किए जाते थे। इसलिए अपने लिए गज का एक नया सुविधाजनक वाद्य निर्माण करना था, जिसे उसने इसराज नामक वाद्य बनाकर किया। प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में इसराज का उल्लेख नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू एवं बांग्ला कृतियों में भी इस वाद्य का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक आधुनिक वाद्य है। यह भी संभव है कि इस वाद्य की निर्मिति मयूर या ताउस वाद्य के आधार से की गई हो। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खां का इसराज वादन सुनते हैं। राग है भैरव।

मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: थोड़ी ही देर बाद हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी में समाचार सुन सकेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों

0: के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। तमाम सुनने वालों का इस सभा में हम स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

सुप्रभात, सुस्वागतम। अर्चना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी संघर्षों की चट्टानों से टकराता हुआ। लेकिन इस यात्रा में एक सहारा ऐसा भी होता है जो हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है, और वो होता है विश्वास। भले ही हम वो विश्वास किसी मनुष्य पर कर बैठे हों या फिर हम अपने ईश्वर पर कर बैठे हों, तो यदि हम ईश्वर पर जब पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं, तब हम उसी का नाम जपना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर का गाया ये भजन।

जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं तब आस्था दिशा बन जाती है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थनाएं बोलने लगती हैं, और जब मन संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करता है तब ईश्वर का स्मरण एक सच्चे साथी की तरह हमारा हाथ थाम लेता है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अनूप जलोटा का गाया ये भजन।

भक्ति शायद कुछ मांगने का नाम नहीं, बल्कि जो उसके प्रति कृतज्ञ होने का भाव है, यह स्वीकार करने का भी भाव है कि हर सुबह एक वरदान है, हर सांस एक कृपा है और हर नया दिन ईश्वर का दिया हुआ एक अवसर है। तो हर नए दिन पर हमें ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। और श्रोताओं को बता दें कि अनूप चलूटा के गाए इस भजन के बाद जो अभी आप सुन रहे थे, आप सुनेंगे लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचना। और आपको एक बार फिर बता दिया जाए कि आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

जब हम ईश्वर के सामने पूरी कृतज्ञता और विश्वास के साथ बैठते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने रख देते हैं, तो आप विश्वास करें और यकीन करें कि उस समय हमें ये विश्वास हो चलता है कि अब हमने अपनी प्रार्थनाओं को और जो हम इतनी अधिक अनुरोध से ईश्वर से कुछ कह रहे हैं, उस सब को हमने उसके चरणों में अर्पित कर दिया है और अब इन सब की देखभाल करने वाला, इन सब विषयों पर सोचने वाला केवल और केवल ईश्वर है। और फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद जो मन की संतुष्टि होती है वो हमें बहुत बड़ा सहारा देती है। आइए श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल का गाया भजन सुनते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 और 103.6 MHz पर, साथ ही मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुलदेवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी में प्रमुख स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और साथियों की। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का चिंतन कार्यक्रम।
1: संसार में रहते हुए बहुत से व्यक्तियों की ये चाहना होती है कि वे सदैव स्वस्थ बने रहें, लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, यश कीर्ति और समृद्धि प्राप्त करें। एक सम्राट के मन में इससे भी अधिक पाने की चाह जागृत हुई। उसने मन में सोचा कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे हजारों सैनिक और सेवक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, चल अचल संपत्ति है। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो इस सबका क्या होगा? कितने युद्ध लड़कर, कितनों को पराजित कर ये सब अर्जित हुआ है, और इतना अर्जित कर लेने के बाद भी क्या मुझे मरना होगा? सम्राट ने कहा कि वह मरना नहीं चाहता है और इसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। सम्राट ने इसके लिए अपने सामंतों से परामर्श लिया और उनसे कहा कि वे कोई उपाय उसे बताएं जिससे मनुष्य के स्थान पर अमृत, मृत्यु के स्थान पर उसे अमृत प्राप्त हो। सामंतों ने सम्राट की इस असंभव इच्छा को सुनकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज तक कोई काल का ग्रास बनने से नहीं बचा है। जिसने भी जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मरने के बाद केवल वही व्यक्ति यश और कीर्ति का सही हकदार रहता है जिसने अच्छे कार्य किए हों, जिसने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। सम्राट ने तो नरसंहार के द्वारा चल अचल संपत्ति अर्जित की है और फिर भी वो इस प्रकार की चाहना कर रहे हैं। जब सामंतगण कोई उपाय नहीं सुझा सके तो सम्राट के महामंत्री ने कहा कि वह मृत्यु पर विजय का कोई उपाय उन्हें बताए, और यदि एक माह में ऐसा नहीं किया तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सम्राट का ये निर्णय सुनकर मंत्री महामंत्री पशुपेश में पड़ गए। उन्होंने अपने मित्रों तथा परिवारी जनों को ये बताया तो वे भी सम्राट की इस अनुचित इच्छा को जानकर दुखी हुए। अंततः महामंत्री

0: सम्राट को मृत्यु से बचाने का उपाय सोचने लगे और इसे सोचने के लिए, इसे खोजने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर भी गए, किंतु जब कहीं से उन्हें मृत्यु से बचने का उपाय की जानकारी नहीं मिली, तब निराश होकर जब वे लौट रहे थे तो एक संत से उनकी भेंट हुई। उनकी समस्या सुनकर संत ने कहा कि अमरताल का जल पीकर मृत्यु से बचा जा सकता है। महामृत्यु महामंत्री सम्राट को वहां ले गए। सम्राट ने जैसे ही अमरताल का जल पीना चाहा कि ताल में रहने वाले जीव जंतुओं ने कराहते हुए सम्राट को बताया कि वह जल पीकर अमर तो हो जाएंगे, किंतु उनकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो वृद्ध से वृद्ध हो जाएंगे और संसार की किसी भी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति से वंचित हो जाएंगे। सम्राट ये सुनकर लौट आए और उन्होंने महामंत्री को यह आदेश दिया कि वो ऐसा उपाय खोजें जिससे अमरता के साथ साथ वे सदैव तरुण बने रहें। महामंत्री पुनः उसी संत की शरण में गए और संत ने महामंत्री को एक उद्यान का पता बताया जिसके अमर फल खाकर मनुष्य सदैव तरुण बना रह सकता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। महामंत्री सम्राट को लेकर उद्यान पर पहुंचे और जैसे ही वो फल खाना चाहते थे कि उन्हें भयंकर शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बाबा बाबा पिता पुत्र पौत्र आदि सभी तरुण ही तरुण हैं और संसार की सीमित भोग सामग्री को पाने के लिए वे परस्पर लड़ रहे हैं। नर्क का सा ये दृश्य देखकर सम्राट वहाँ से लौट आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार अमर बनने से तो मृत्यु ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है। व्यक्ति को ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की समय अनुसार मृत्यु होती है और यह प्रकृति के नियम के अनुसार जरूरी भी है। व्यक्ति को समाज अथवा राष्ट्र के लिए किए जाने वाले अपने कार्य से स्वयं को अमर बनाना चाहिए, न कि शरीर से।
1: अभी हमारी श्रोता यतीन्द्र चतुर्वेदी की जुबानी सुन रहे थे अमृत विषय पर विचार। कार्यक्रम था चिंतन।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी श्रोता रात्रि 11:10 से 11:45 तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 16। रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक हमारी श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत मिथुन चक्रवर्ती पर आधारित। चित्रपट संगीत का समय रात्रि 8 बजे से लेकर 8:45 तक। 7:30 बजे, जी हां, शाम 7:30 बजे आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक चौपाल कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा गतिशीलता और संतुलन के लिए योग, पशुओं में टीकाकरण का महत्व। इसी के साथ श्री ब्रजेश कुमार चंदेल से की गई भेंटवार्ता भी आपको सुनवाई जाएगी, जिसका विषय रहेगा खेती को लाभकारी बनाने हेतु नवाचार। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे एक बार फिर से शाम की सभा में 6:05 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आज का संवाद होगा दुविधा में बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन सबसे बेहतरीन विकल्प है। हम अपने श्रोताओं को बताएं प्रातः 9:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे घर आंगन कार्यक्रम। आज चर्चा

का विषय रहेगा अंतरराष्ट्रीय परिवार और भरण पोषण दिवस। महिलाओं का स्वास्थ्य और योग, ये भी आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहने वाला है। और इसके अलावा श्रीमती सुमन मीना से की गई एक भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय रहेगा महिलाएं कैसे बढ़ाएं बागबानी से आमदनी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे प्रातः 9:10 पर। और श्रोताओं को दिए कार्यक्रम संबंधी एक यहाँ पर सूचना भी कि उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम सजी फोन इन कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे प्रातः 8:15 पर। आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा योग व आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सैनी। तो आप सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम। आपको तो पता है ना, इस कार्यक्रम में आप हमें लगा सकते हैं फोन हमारे टेलीफोन नंबर 2941142 पर, और एसटीडी कोड रहेगा 0744। टेलीफोन लगाकर आप डॉक्टर कपिल सैनी से विषय से संबंधित कोई भी सवाल का जवाब जान सकेंगे। फिल्म संगीत गाने सुहाने आप सुनेंगे 7:30। प्रातः 7:00 हम लेकर हाजिर होंगे नमस्कार कोटा कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा प्राणायाम से होती जीवन सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए आदर्श समय। तो श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। कुछ ही पलों के बाद आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र संस्कृत में समाचारों के लिए। करते ही थोड़ा सा इंतजार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीय

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वीव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम जानते हैं हमारे श्रोता कर रहे हैं अगले कार्यक्रम का इंतजार, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त करते हुए हम लेकर हाजिर हैं आज का नमस्कार कोटा कार्यक्रम।

कुछ लोग चाय से जागते हैं, कुछ अलार्म से, और जो बहुत जल्दी जाग जाते हैं बहुत जल्दी, वो होते हैं सुपरमैन। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना और अपने स्वास्थ्य के देखभाल के हिसाब से जल्दी उठना कितना लाभदायक होता है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे विचार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, सकारात्मक सुनकर दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो आइए हम भी कुछ बातों और विचारों का ये खूबसूरत सिलसिला शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन सही बात यह है कि आज भी धीरे से ही दिल तक कुछ बातें पहुंच जाती हैं। कुछ ऐसी ही बातों के साथ इस सुबह को और थोड़ा सा सार्थक बनाया जाए।

आज सुबह तो हो चुकी है। जी हाँ, और ये बता दिया जाए आपको कि कल सुबह होगी 5:36 पर। जी हाँ, प्रातः 5:36

पर, और जब सुबह होगी तो जाहिर सी बात है रात तो आएगी। तो रात का समय यानी कि सूर्यास्त का समय भी आपको बता दिया जाए, आज शाम 7:19 पर।

और जब सुबह होती है तो हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे हाथ में 24 घंटे रख देता है। अभी हम पर है कि हम उन्हें शिकायतों में खर्च करते हैं या फिर खुशियों में निवेश करते हैं। तो इसी सोच के साथ आप सभी का स्वागत है आज के नमस्कार कोटा कार्यक्रम में। और हाँ, अब आपको बता दिया जाए कि हो चुका है प्रोग्राम नमस्कार कोटा का आगाज। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर तरन्नुम। नाज़ कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

और श्रोताओं आप कर ली जाए आज के विचार की बात। तो आज का विचार कुछ यूँ कहता है कि अच्छे लोगों की कदर जरूर करनी चाहिए। जीवन में सबसे कीमती चीजें अक्सर बिना शोर किए हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जैसे पेड़ जो होता है ना, वो बिना कुछ मांगे छाया दे देता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं बिना किसी स्वार्थ के जीवन को आसान बना देते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उनकी मौजूदगी को तब तक सामान्य मान लेते हैं जब तक वो हमसे दूर नहीं जाते हैं। सच्चाई ये है कि अच्छे लोग किसी की भी जिंदगी में नहीं आ सकते। जी हाँ, जो लोग हमारी खुशी में मुस्कुराते हैं, मुश्किल समय में हमारा हौसला बनते हैं, हमारी गलतियों पर हमें समझाते हैं और बिना किसी अपेक्षा के हमारा साथ निभाते हैं, वो किसी अनमोल उपहार से कम नहीं होते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग हैं तो भाई कदर कीजिए उनकी, उन्हें महसूस कराइए कि उनका होना आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती उन्हें पाने में नहीं है बल्कि उनको संजो कर रखने में है। याद रखिए दोस्तों कि दौलत खोकर वापस पाई जा सकती है, लेकिन अच्छे लोग अगर खो जाएं तो अक्सर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ रिश्ते हैं तो उन्हें संभाल कर रखना हमारा ही फर्ज है।

आप श्रोताओं को ये एक बार फिर से याद दिला दिया जाए कि आप सुन रहे हैं नमस्कार कोटा कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस कार्यक्रम में आप और मैं यानी आपकी ये रेडियो साथी रहने वाले हैं साथ जब तक नहीं बजेंगे 7:30। तो आप जानते हैं ना, मन लगाकर कान लगाकर सुनते रहना है इस कार्यक्रम को और आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल को।

0: और हाँ, ये भी आपको बता दिया जाए कि अपने रेडियो सेट की रखनी है लाजमी सी ये आवाज़, इतनी कि ना हो किसी को एतराज।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: और श्रोताओं, अब बात कर ली जाए, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्राणायाम से होती जीवन सुरक्षा। और दोस्तों, हम अपने घर की सुरक्षा जब करना चाहते हैं तो आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, हम ताले लगाते हैं। मोबाइल की सुरक्षा जब करना चाहते हैं तो हम उस सुरक्षा के लिए पासवर्ड रखते हैं। लेकिन क्या कभी अपने शरीर और मन की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचते हैं? शायद कोई सोचता होगा, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे। प्राणायाम केवल एक योग क्रिया नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन का सुरक्षा कवच है। हमारी सांसें ही जीवन का आधार हैं, और जब सांसों पर नियंत्रण आता है तो मन शांत होता है, शरीर ऊर्जावान बनता है और जीवन में संतुलन आता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या आम हो गई है। ऐसे में प्राणायाम हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, मानसिक एकाग्रता विकसित करने और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में भी बहुत सहायक होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि प्राणायाम जो है वो हमें अपने आप से जोड़ता है। दिन में कुछ मिनटों का सचेत श्वास अभ्यास न केवल शरीर को ताजगी देता है, बल्कि मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो स्वस्थ जीवन किसी दवा की दुकान से नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों, इसके लिए रोजमर्रा की अच्छी आदतों को अपनाना पड़ता है। और प्राणायाम जो है ना वो एक ऐसी ही आदत है जो धीरे धीरे जीवन को अधिक सुरक्षित, संतुलित और सशक्त बना सकती है।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए

0: इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
1: तो साथियों, आपको ये जरूर बता दिया जाए कि सांसों की लय में छिपा है स्वास्थ्य का संगीत और प्राणायाम उस संगीत का मधुर अभ्यास। आइए अपने दिन को कुछ समय अवश्य दें और स्वस्थ तन और शांत मन ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है और स्वस्थ सांसें भी हमारे जीवन के लिए अनमोल देन है। इस बात को हमें स्वयं ही समझना है।

और जिस तरह स्वस्थ तन जो होता है ना, वही स्वस्थ सांसें होती हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य से जुड़ा और एकदम बहुत ही अच्छा सा संगीत जब कानों को छू जाता है, तब भी मना स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है।

साथियों, हम जानते हैं कि जब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जाने कि सांसें चल रही हैं, इसलिए जीवन चल रहा है। लेकिन सांसों को सही दिशा मिले तो जीवन खिल उठता है। प्राणायाम को केवल योग न समझा जाए, बल्कि अपने स्वास्थ्य, अपने संतुलन और अपने जीवन की सुरक्षा का संकल्प बनाया जाए, क्योंकि जो अपनी सांसों को साध लेता है वो जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर लेता है। अभी हमने आपको एक संदेश सुनाया, और जब बात होती है कुछ आगे किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी चीज़ को, किसी भी हम कोई भी संकल्प लेते हैं उसको करने की, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से यदि ठान लेते हैं तो उसको आगे भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो आपको पता है ना कि आ रहा है योग दिवस, तो आपको समझना होगा योगा का भी महत्व। और अब बात वृक्षारोपण के लिए आदर्श समय क्या है, इस बात की। एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय यूं तो 20 वर्ष पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज भी है। लेकिन प्रकृति का अपना एक विज्ञान भी है जो हमें बताता है कि पौधे कब सबसे अच्छी तरह पनप सकते हैं। भारत में वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय वर्षा ऋतु अर्थात जून से अगस्त के बीच माना जाता है। इस दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, तापमान अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है और पौधों को बढ़ने के लिए प्राकृतिक जल आसानी से मिल जाता है। यही कारण तो होता है कि मानसून को हरियाली का मौसम कहा जाता है। लेकिन वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने का नाम नहीं होता, असली वृक्षारोपण तब होता है जब पौधे की देखभाल भी उतनी ही लगन से की जाए। एक पौधा लगाना कुछ मिनटों का काम है, लेकिन उसे पेड़ बनने में वर्षों वर्षों लग जाते हैं, और ये वर्षों की जिम्मेदारी भी हमें की बनती है। आज जब बढ़ता प्रदूषण, घटती हरियाली और बदलता पर्यावरण हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है, तब हर लगाया हुआ पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का एक बीज है। तो दोस्तों, ये हमें याद रहे कि पेड़ केवल छाया नहीं देते, वो जीवन देते हैं। वो केवल ऑक्सीजन नहीं बनते, बल्कि वो भविष्य बनाते हैं। इसलिए इस मानसून का एक पौधा अवश्य लगाइए और तब तक संभालिए जब तक वो स्वयं किसी और को छाया देने के लायक न बन जाए, क्योंकि वृक्षारोपण एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, आने वाले कल के प्रति हमारी अटूट जिम्मेदारी है। आइए अब सुने एक और बेहतरीन सा सुरीला संगीत।

और श्रोताओ, अब बात आज के दिवस की। आज का दिवस परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कभी कभी घर की रोटी में सिर्फ आटे का स्वाद नहीं होता, उसमें किसी दूर बैठे अपने की मेहनत भी घुली हुई होती है। किसी माँ की दवा, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बहन के सपने और किसी परिवार की उम्मीदें अक्सर उन हाथों के सहारे पूरी होती है जो अपने घर से दूर रहकर काम करते हैं। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें उन लाखों लोगों के योगदान को याद करने का अवसर देता है जो अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए घर से दूर रहकर मेहनत करते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने प्रियजनों तक पहुँचाते हैं। ये केवल धन का लेन देन नहीं है बल्कि प्यार, जिम्मेदारी और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। हर भेजी गई राशि के पीछे अनगिनत त्याग है, लंबे कार्य घंटे और परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना छिपी होती है। आज के दौर में जब दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है, तब परिवार प्रेषण न केवल परिवारों की आर्थिक सहायता करता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए अवसरों को भी बढ़ावा देता है।

और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे देश बंधु चित्रंजन दास की राष्ट्र सेवा का एक उज्जवल अध्याय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने केवल संघर्ष ही नहीं किया बल्कि अपने जीवन, प्रतिभा और संपत्ति तक को देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे देश बंधु चित्रंजन दास। 5 नवंबर 1870 को जन्मे चित्रंजन दास का एक प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे आप, समाज सुधारक थे, दूरदर्शी नेता थे। उनकी वकालत इतनी सफल थी कि वो देश के सबसे प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में गिने जाते थे। लेकिन जब देश ने पुकारा तो उन्होंने सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन छोड़कर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुन लिया और चित्रंजन दास ने स्वतंत्र

नेतृत्व आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। वो मानते थे कि भारत की आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जागृति से भी जुड़ी हुई है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और कर्म से पैदा होता है।

हम अपनी श्रोताओं को बताएं कि कोटा शहर का अधिकतम तापमान कल रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 25.3 डिग्री सेल्सियस।

हम अपने श्रोताओं को एक और खास खबर दें कि कोटा से उज्जैन के लिए पहली बार सीधी मेमू सेवा शुरू की जा रही है। कोटा रेल मंडल के हाड़ौती अंचल से मालवा के उज्जैन को कनेक्ट करते हुए पहली बार सीधी मेमू रेल सेवा सोमवार को शुरू हो गई है।

और श्रोताओं, अब जैसा कि आप जानते हैं कि नमस्कार कोटा कार्यक्रम को समाप्त करने की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, इजाज़त तो लेनी पड़ेगी, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहना होगा कि आपको ख़ास ख्याल रखना है अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का, साथ में ट्रैफिक नियमों का भी पूरी तरीके से पालन करना है। और इस थोड़ी थोड़ी सी उमस से भरी हुई गर्मी में भी आपको ख़ास ख्याल रखना है सभी का और अपनों का भी। और हाँ, दुआओं में ज़रूर याद रखना है मुझे भी और अपनों को भी। तो चलती हूँ, राम राम दुआ सलाम, रखना दुआओं में याद, नमस्कार कोटा।

नमस्कार, कोटा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत गाने सुहाने।

श्रोताओं कीजिए स्वीकार प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इस गीत से, जिसे लिखा है SH बिहारी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।

कुर्बान फिल्म से सुना आपने ये गीत अनुराधा पौडवाल सुरेश वाडेकर की आवाजों में, समीर के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। श्रोताओं को दिए देते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आप सुनेंगे प्रातः 8:15 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय रहेगा योग व आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सैनी। तो आप सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम, और आप इस कार्यक्रम में टेलीफोन लगाकर सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 2941142, एसटीडी कोड आपको लगाना होगा 0744।

दोस्तों, जिंदगी भी एक फिल्म की तरह ही होती है। हर दिन एक नया दृश्य, हर मुलाकात का एक नया किरदार, हर याद एक नया गीत। फर्क बस इतना है, फिल्म के गाने कुछ मिनटों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जीवन के सुरीले पल उम्र भर हम गुनगुनाते रहते हैं। बहरहाल, आपको बताया जाए, कलयुग फिल्म का था ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, और नगमा निगार थे सईद कादरी, मौसिकार थे अनु मलिक। सुनते हैं अब फिल्म संगीत गाने सुहाने का अंतिम गीत, और कार्यक्रम का रुख थोड़ा सा बदलते हुए हम सुनवाते हैं आपको ये गीत, जवाब हम देंगे फिल्म का। इस बार मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, समीर के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: शौक तो प्यार में सौ बार होती है, सौ बार होती।
1: जवाब हम देंगे फिल्म का था ये अंतिम गीत। फिल्म संगीत गाने सुहाने आप सुन रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लेकर हाजिर होंगे प्रातः 8:15 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। तो आप सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के आज के अंक के लिए।
2: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी

0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है।

0: है। सिलचर के प्रोफेसर अनुप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत।

0: तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम तमाम सुनने वालों का इस सभा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर है सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय योग व आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
5: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स। सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लेपरोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चे दानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: तमाम सुनने वालों का स्वागत। और श्रोताओं को जैसा कि हम बता चुके हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य हम लेकर हाजिर हैं। आज का विषय एक बार फिर आपको बताया जाए, योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेषज्ञ, लेकिन उनकी आवाज भी आप सुनना चाहते हैं और हम आपको उनकी आवाज भी सुनवाएंगे, जरूर सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बता दें कि जब आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे तो आपको हमारे टेलीफोन नंबर डायल करने होंगे 2941142, एसटीडी कोड रहेगा 0744। तो श्रोताओं, आज केस कर

0: कार्यक्रम में आप तमाम सुनने वालों का स्वागत कीजिए, स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय एक बार फिर बताएं, योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। डॉक्टर साहब की आवाज अब आप तक पहुंचा दी जाए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आज के उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हमारे श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आप तो बहुत एकदम एनर्जेटिक दिख रहे हैं और लग रहा है आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ठीक व्यक्ति और ठीक डॉक्टर से बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह मैं 2 योगा सेशन कंडक्ट करवा के आ रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो चेहरे पर नजर आ रहा है, बहुत ताजगी नजर आ रही है डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सैनी। तो डॉक्टर साहब, आज जो हमारा आज का विषय है उसमें सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर योग है क्या?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। योग आप सिंपली जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, मतलब जोड़ना
0: जी,
1: जोड़ना आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, बेसिकली योग ये है
0: जी।
1: और इसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह पर बताई गई है, जैसे योगम समत्वम उच्यते, मतलब सम करना, सम जोड़ना, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ना।
0: बिल्कुल,
1: सभी जो अलग अलग धर्म अलग अलग परमात्मा में विश्वास करें उन सभी को, खुद को उससे जोड़ना।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है

0: पर बताई गई है, जैसे योगम समत्वम उच्यते,
1: जी
0: मतलब सम करना, सम जोड़ना, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ना,
1: बिल्कुल
0: सभी जो अलग अलग धर्म अलग अलग परमात्मा में विश्वास करें उन सभी
1: बिल्कुल
0: को खुद को उससे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जोड़ना।
1: बिल्कुल
0: दूसरा है योगा कर्म सुकोशलम। आपने बहुत सारे योग के फॉर्मेट सुने होंगे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म
1: जी
0: योग, राजयोग। तो वहां जो कर्म योग है उसमें है कर्म सुकोशलम। जैसे आप अपने कर्म में कुशल हैं, आप
1: जी
0: बहुत अच्छी वक्ता हैं,
1: जी
0: और मैं एक चिकित्सक हूं, अगर मैं अपने कर्म में कुशल हूं तो मैं योगी हूं। तो
1: बिल्कुल
0: ये भी एक योग की डेफिनेशन है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। आपको अपनी चित्त और वृत्तियों को रोक के रखना है, उनको अपने कंट्रोल में रखना है। आप अपने कंट्रोल में हैं, आप अपने आपके कंट्रोल में हैं, तो आप योगी हैं। आजकल ऐसा होता है कि हमें कोई छोटा सा भी कुछ बोल देता है तो हम वहां अपने पूरे टेम्पर को लूज कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हम योगी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: योग की परिभाषा ये है।
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि योग की आपने जो परिभाषाएं बताई, आप यदि हम आपसे पूछें कि एक योग और एक प्राणायाम, तो दोनों को कैसे विभाजित करेंगे?
0: बिल्कुल। देखिए, योग और प्राणायाम, एक्चुअली योग में एक फॉर्मेट है अष्टांग योग, जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान योग, भक्ति
1: जी
0: योग, कर्म योग, वैसे अष्टांग योग।
1: जी
0: अष्टांग योग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप देखेंगे यहाँ योग स्टार्ट होता है यम से, यम नियम, फिर आसन। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो है आसन, उसके बाद स्टेप आती है प्राणायाम की। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब आप समझते हैं कि हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ठीक है, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह अननेसेसरी चीजों को आप अपने पास नहीं रखेंगे, बिना जरूरत की चीजों को आप स्टोर नहीं करेंगे। और नियम में आता है शौच, मतलब हमें शुद्ध रहना है, संतोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान में अपना ध्यान लगाना। उसके बाद आसन, जो हम कर रहे हैं ये योग नहीं, ये आसन है, हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हमें अपनी सांसों पे नियंत्रण करना होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं जो आपने सुने भी होंगे, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी। अगर सबसे पावरफुल कोई ट्रीटमेंट का कोई सोर्स है तो वो आपका प्राणायाम है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। हमारी सरकार ये जानती है कि योग और प्राणायाम से अगर हम लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे तो सरकार का भी पैसा बचेगा और पेशेंट और जितने भी हमारी कम्युनिटी है वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए योग दिवस पे इतना फोकस किया जाता है ताकि लोग खुद से योग करना स्टार्ट करें। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी इसके ही स्टेप। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, धारणा मतलब हमें एक जगह पे कंसंट्रेट करना, उस कंसंट्रेशन को बढ़ाना, और ध्यान, जब हमारी धारणा बहुत लंबे टाइम तक हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत लंबा हो जाता है, तो हम उसे ध्यान बोलते हैं। और समाधि का मतलब कि हम उस परमात्मा से एक हो गए हैं। ये योग मतलब केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी है, ये हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाती है, इसलिए इसको पूरा दुनिया भारत के इस योग को अभी फॉलो कर रही है और वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य उन्नत कर रही है।
1: डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि योग जो है वो योग, ये योग आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन है, ये हम सबको पता है, लेकिन आज आम जन तक ये कितना पहुंच रहा है?
0: आम जनता अभी इससे काफी दूर है। आप देखेंगे कि आपके आसपास भी, आप खुद भी डेली योग प्रैक्टिस नहीं करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और आपके आसपास जो देख रहे हैं वहां योग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आम लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है। विदेशों में ये अब एक कल्चर स्टार्ट हो गया है कि वहां लोग डेली सुबह अपनी योगा मैट लेके और एक नेचर के पास जाते हैं और नेचर के पास जाके योगा के सभी फॉर्मेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आसन हो गए हैं, प्राणायाम हो गया है, ध्यान हो गया है, इन सभी को प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां पे हेल्थ काफी अच्छी है, और इंडिया अब जो पहले हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता था कि इंडिया में लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है, आज के युग में आप देखेंगे तो इंडिया हेल्थ की जो इंडेक्स है उसमें बहुत नीचे के लेवल पे है, मतलब हम लोग कहीं से भी हेल्दी नहीं है। और डायबिटीज में तो हम फर्स्ट हैं, टॉप किया है हमने, डायबिटीज कैपिटल है, और आने वाले टाइम पे कैंसर कैपिटल भी हम होने वाले हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है कि योग और आयुर्वेद से जीवन शैली, यानी हमारी लाइफ स्टाइल,
0: बिल्कुल,
1: तो उसी से जो बीमारियां पनप रही हैं उन्हीं पे बात कर रहे हैं आज की, उसी के लिए कि ऐसी बीमारियों का उपचार में योगा कहाँ तक सार्थक है। ठीक डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ समय पहले, और मेरे जहन में भी है कि डॉक्टर पवन सिंगल,
0: बिल्कुल,
1: सुना था और उनकी डेथ हुई, इतना लंबा समय योगा को देने के बाद उनकी डेथ, आखिर ऐसा क्या हुआ?
0: बिल्कुल, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोगों को योग के लाभ पूरे क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसके तीन मेन कारण हैं। पहला जो मैंने आपको बताया अष्टांग योग का फॉर्मेट यम नियम, आप यम और नियम को

0: सीखेंगे तो ये बेसिकली आपके आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं, आप पूरे अपने रूटीन में सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो आपको मेंटल पीस दे रही है।
1: जी
0: तो अगर आप यम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद जब आप आसन डायरेक्ट करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस पोजीशन में नहीं है कि वो आसन को उतना कैरी कर पाए। आसन का मतलब होता है जिसमें आप लंबे टाइम तक बैठ सकें, ठीक है, आसन की परिभाषा ही यही है। आस्यते सुखम अनीनीति आसनम, जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं। तो हर आदमी के लिए आसन अलग है, तो स्पेसिफिक योग फॉर्मेट हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। अगर किसी को मोटापा है तो वहां अलग तरह के योग फॉलो करने होंगे, अगर किसी को घुटने का दर्द है तो अलग, अगर किसी को अनिद्रा है तो उसमें अलग तरीके के योग फॉलो करने होंगे। और उससे पहले यम नियम का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। यम नियम की हम थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजों को अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थियरी नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ का साइंस है। यम नियम को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक योगा करेंगे, और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डाइट, जिसकी वजह से डॉक्टर पवन सिंघल को प्रॉब्लम हुई।
1: उनकी एज क्या रही थी?
0: उनकी एज लगभग 54 आई थिंक होगी।
1: अच्छा,
0: 50 to 54 की एज में हो गए हैं, और ये डाइट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि डाइट लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कोटा में कचौरी काफी फेमस है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप एक कचौरी खाते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि आप कोई नहीं कर सकते।
1: सुबह नहीं होती कचौरी के बिना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कचौरी को डाइजेस्ट करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, और लोगों को लगता है, एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट है, अगर आप उनको नाश्ते में एक गुलाब जामुन एक कचौरी देंगे तो वो गुलाब जामुन को छोड़ देंगे और कचौरी खा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपकी कचौरी में गुलाब जामुन से भी ज्यादा शुगर है। अगर आप कचौरी खा रहे हैं तो वो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के 1 चम्मच में 8 से 10 चम्मच ग्लूकोज हो सकता है, और जो आप खा रहे हैं वो सुक्रोज है, बेसिकली टेबल शुगर, उसमें 1 चम्मच में लगभग 2 चम्मच ग्लूकोज होता है, तो उससे बहुत ज्यादा शुगर कचौरी में है। तो ये हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम जो खा रहे हैं हम उसको डाइजेस्ट कितने टाइम में कर पाएंगे, बर्नआउट कितने टाइम में कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का हमारा विषय योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर कपिल सैनी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सैनी से आप सीधे बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 2941142 एसटीडी कोड रहेगा 0744। इसी के साथ आ गया है एक फोन। हेलो हेलो
2: हेलो हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? शायद नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ पाया इसीलिए उनका कॉल कट गया। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे
2: हैं? जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़।
1: योगेश जांगड़ जी?
2: हाँ जी
1: जी। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं?
2: हाँ जी, शुरू से सुन रहे हैं
1: जी। आपको पता है ना आज का विषय?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: जी,
2: पता
1: जी है। अपना सवाल रखें प्लीज।
2: हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे तनाव वगैरह की जो स्थिति होती है उसको योग से किस तरह से दूर कर सकते?
0: बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि तनाव आजकल हर पेशेंट को है, और आयुर्वेद में बताया गया कि तनाव ही आपकी सारी बीमारियों का सबसे मूल कारण है। ठीक है, शरीर में बीमारियां बढ़ाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है तनाव होता है, तो इसके लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। ठीक है, आप योग से ज्यादा प्राणायाम पे फोकस करेंगे। उसमें एक टेक्निक है सिंपल प्राणायाम की, अगर आपको कॉम्प्लेक्स विधियां समझ नहीं आ रही है, अनुलोम विलोम कपालभाति, अगर आप इसका प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको इमीडिएट तनाव हुआ है, तो इमीडिएट रेमेडी है कि आपको बॉक्स ब्रीदिंग करना है। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब आपको 4 सेकंड, जैसे आपको तनाव हुआ है दिन में 3 बजे, अब सुबह आपने प्राणायाम किया लेकिन तनाव दिन में 3 बजे हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, 4 सेकंड इनहेल करेंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे, 4 सेकंड एक्सहेल करेंगे। ये आप करते रहिए 5 मिनट तक, जो आपका तनाव है, आपके बॉडी में जो हार्मोन है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होता है और आपको इमीडिएट उससे आराम मिलता है। तो सुबह में प्राणायाम कीजिए और इमीडिएट रिजल्ट के लिए आप इस टेक्निक को स्टार्ट कीजिए, ये भी प्राणायाम का एक पार्ट है।
2: जी जी, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके कार्य का अनुभव, आपका अपना आयुर्वेद का क्षेत्र, अपना आपका काम, आप एक डॉक्टर हैं, आपको आपने क्या अनुभव किया है कि योग से आपके अनुभव के अनुसार कितने लोग जो हैं वो उन्होंने आजकल की जीवन शैली के से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनमें उन्होंने राहत पाई है, वो ठीक हुए हैं?
0: बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हर आदमी
1: एक कॉल ले ले।
0: बिल्कुल, एक कॉल ले ले।
1: हेलो
3: हेलो डॉक्टर।
1: हाँ जी,
3: मैं डॉक्टर सुधारे।
1: कौन बात कर रहे हैं? कौन बात

0: कर रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से।
0: अच्छा, पूछिए क्या पूछना है।
1: योग द्वारा पीलिया सब क्यों है?
0: योग द्वारा
1: पीलिया पीलिया हेपेटाइटिस।
0: जी पीलिया, हाँ कहिए।
1: छुड़ाने का तरीका।
0: अच्छा, छुड़ाने का तरीका बताना है। अच्छा जी, जी सुन रहे हैं आप या वहाँ सुनेंगे?
1: जी सुन रहे हैं।
0: जी बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
2: बिल्कुल, योग के लिए जो आपके स्पेशली स्टमक एरिया वाले जो योग होते हैं, जैसे पवन मुक्तासन हो गया है आपका, आपका उड्डयन बंद हो गया है, ये सभी बंदों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिवर के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और उससे आपके वहाँ पे हेल्दी जो हार्मोन्स है वो जाते हैं और आपका जॉन्डिस जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हेपेटाइटिस बी जहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार आपको अगर हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट, तो उसके मैनेजमेंट में हम ये योगा को काफ़ी इनकॉर्पोरेट करके उनकी पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बार होने के बाद वो कभी ठीक नहीं होता है। तो अगर हम वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं तो आपकी हेल्प करती है। सेकेंड, जब आपको हेपेटाइटिस होता है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी सांसें फास्ट फास्ट रैपिड आपको ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब आप प्राणायाम की हेल्प लेते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट होता है, बॉडी कंफर्टेबल फेज में आती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि लिवर आपकी बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है और वहां पे अगर आपने लोड डाला हुआ है डाइट से तो वो रिकवर करेगा ही नहीं। आपकी बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह, मतलब रीजनरेशन की पावर है जिसमें, वो लिवर है। ठीक है, तो वहां उसको हेल्दी रखने के लिए डाइट हेल्दी होना जरूरी है।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करते हैं।
2: बिल्कुल, कि योगा से काफी लोगों को लाभ होता है। तो हमने जो अभी एग्जांपल लिया था डॉक्टर पवन सिंगल का,
0: जी,
2: वो भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं काफी, 11 घंटों में उन्होंने 100 किलोमीटर दौड़ा हुआ है, ये योग की हेल्प से किया हुआ है। 8 घंटों में उन्होंने 3600 सूर्य नमस्कार किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
2: और उन्होंने 17 बार रक्तदान किया हुआ है। ये सारे रिकॉर्ड उन्होंने योगा की हेल्प से ही बनाए। तो आप योग से हर तरह की बीमारी में लाभ ले सकते हैं, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, लेकिन इसके साथ डाइट होना जरूरी है। उन्होंने जहां गड़बड़ की थी वो डाइट था, एक्चुअली उन्होंने 1 महीने से शुगर और सॉल्ट बिल्कुल कट किया हुआ था। अगर आप शुगर कट कर देंगे तो आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सॉल्ट कट कर दिया तो आपकी बॉडी पूरी सॉल्ट पे ही चलती है। सोडियम लो हो गया आपका तो फिर ये मान लीजिए कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है।
0: जी डॉक्टर,
2: तो इसलिए हमें डाइट हमेशा एक एक्सपर्ट की मदद से ही फॉलो करनी चाहिए।
0: जी हेलो।
3: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे
3: हैं? मैं महेश बोल रहा हूँ साहब। डॉक्टर, मेरी एज 66 है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं महेश जी?
3: मैं कोटा से बोल।
0: जी बहुत बहुत स्वागत। जी
3: मेरे को सब L4 L5 में प्रॉब्लम है सर, थोड़ी सी है ना, पैरों में झंझनाहट रहती है, इसके लिए कुछ योगा सजेस्ट करेंगे सर?
2: बिल्कुल, आपको एक्चुअली स्पेसिफिक योगा करना पड़ेगा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली योगा स्टार्ट करना होगा, और योगा के साथ अगर आप प्राणायाम को इनकॉर्पोरेट करेंगे और डाइट प्रॉपर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब L4 L5 की प्रॉब्लम होती है तो आपके बैक एरिया के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है और प्रोटीन थोड़ा बढ़ाना है ताकि वहाँ की मसल्स स्ट्रांग हो। इसका कारण समझना है आपको, ये नसें क्यों दब जाती हैं आपकी, जब दोनों हड्डियों के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं वो जब वीक होती हैं, जो उनको सपोर्ट करके अपनी जगह पर रखी हुई है, वो वीक होने से ये दबाव है। तो वो मांसपेशियां किससे बनी हुई है? वो मोस्टली प्रोटीन से बनी हुई है। तो आपको प्रोटीन लेना है, और प्रोटीन लेने का लाभ तब मिलेगा आपको जब आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो अपने खाने में आप अनाज को थोड़ा कम कीजिए, सोया बड़ी ऐड कीजिए, प्रोटीन के और सोर्सेस पनीर, टोफू, एग्स, नॉनवेज, ये सब आप ले सकते हैं। वेजिटेरियन है तो मैंने 3 ऑप्शन आपको बता दिए जो कि प्योर आपके प्रोटीन ही है, उसमें सबसे बेस्ट आपके लिए सोया बड़ी है, वो आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। दालों को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये सब करने से और योगा करने से और साथ में प्राणायाम, प्राणायाम में आपको एक्सेलेशन प्रोलॉन्ग करना है, मतलब अगर आप 4 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं, 6 सेकंड के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, तो 8 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है, इससे आपका पेन कम होगा इमीजिएट। आप इसकी प्रैक्टिस अभी भी करके देख सकते हैं, 10-15 मिनट आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेन आपको कम लगेगा, झंझनाहट कम लगेगी।
3: 5-7 मिनट करता हूँ सर, अनुलोम विलोम?
2: नहीं, अनुलोम विलोम से नहीं होगा ये, अनुलोम विलोम से आपको केवल सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो मैंने मेथड बताया आपको, 4 सेकंड के लिए आप इनहेल कीजिए, 6 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, और 8 सेकंड के लिए आप एक्सहेल कीजिए। इसकी आप 15 सेकंड डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि योगा तो आपके स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि आप कितना कर सकते हैं, तो आप किसी भी योगा ट्रेनर से मिलकर उसको करवा सकते हैं। लेकिन जो आप घर पे बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं वो है जो मैंने आपको ब्रीदिंग की टेक्निक बताई है, ये और डाइट जो मैंने आपको बताई, इससे आपको 100% रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, झालावाड़ रोड, कोटा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री।

0: सेंटर E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC100 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत, और आपको एक बार फिर बताएं कि आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कपिल सैनी। डॉक्टर कपिल सैनी, हम आज बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं। 21 जून भी आ रहा है और हमारे श्रोताओं को भी लगभग पता ही होगा कि योग दिवस आ रहा है, और इस बार का थीम जो है वो आपके जरिए जानेंगे कि क्या थीम है इस बार का।
2: बिल्कुल, इस बार हमारे जो जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की तरफ से कोटा में भी योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं, और 11 जगह पर कोटा में योगा सेशन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। और थीम जो इस बार भारत सरकार ने रखी है वो बहुत अच्छी थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग मतलब आप बुढ़ापे तक भी फंक्शनल रहें, आप बुढ़ापे तक अपने सारा काम कर सकें और आपकी आयु लंबी हो, तो ये थीम है। और इसके साथ एक स्लोगन भी दिया गया है, वो है योगा 365, मतलब योग दिवस केवल एक दिन नया मनाए हम, और 365 दिन हम ये पूरा अपना सेशन योगा का डेली कंडक्ट करें खुद से, और हम अपनी एजिंग तक हेल्दी रहें। तो एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना
1: जी, बिल्कुल,
2: और हेल्दी एजिंग का मतलब है स्वस्थ रूप से आप बुढ़ापे में रहें,
1: बुढ़ापे में रहें। और यदि हमारी महिला श्रोता सुन रही होंगी तो वो जरूर उनके मन में बहुत एक उत्साह जगा होगा कि क्या योगा करने से हमारी स्किन और बाल भी क्या बहुत हेल्दी रह सकते हैं।
2: बिल्कुल, योग आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का फ्लो ठीक करता है, इससे पूरे जो न्यूट्रिएंट्स आप खाने में ले रहे हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचेंगे और आपकी स्किन का ग्लो ठीक होगा, आपके बाल काले होना स्टार्ट होते हैं। अगर आप उसके साथ डाइट अच्छा लेते हैं तो आपकी फेस पे ग्लो आएगा, आपके नेल्स अच्छे होंगे, ठीक है, इसके अलावा आपका विजन भी इम्प्रूव होता है, तो ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होना स्टार्ट होती हैं। और हाँ बिल्कुल, योग में आप प्राणायाम और आसन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप यूज करेंगे और उसके साथ अपनी डाइट हेल्दी रखेंगे, आपको हमेशा योग का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी डाइट हेल्दी है।
1: जी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे
3: हैं? मैं दिलीप राठौड़ बात कर रहा हूँ
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं दिलीप जी?
3: जी, कोटा से।
1: जी, अपना सवाल रखें प्लीज।
3: मेरा ये सवाल है मैडम, हमारे घर के बच्चे हैं ना, रात में 9:30-10 बजे तक खाना खाते हैं, घूमते फिरते नहीं है और सो जाते हैं, तो उनको योगा करना चाहिए ना। देखो मैडम,
1: तो आप मुझे बताएं बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं
3: है?
1: बच्चे
3: सुन रहे हैं,
1: तो आपको पहले बच्चों को उठाना चाहिए था और उनको भी डॉक्टर साहब की बात सुनानी चाहिए थी।
3: मैं कहता हूँ पर मीठी मीठी गोली मारती है दादी की, रेंदो रेंदो रेंदो, अरे मेरे की ऐसा कह
1: है। तो अब है ना डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना वो आप जरूर बच्चों तक पहुंचाइएगा। सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए बच्चों को योग से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको एक उनको एक आइडियल उनके सामने रखना होगा, और वो आप खुद होंगे। जैसे मैं खुद अपने घर में योगा करता हूं, मैं खुद अपनी अच्छी डाइट फॉलो करता हूं, तो मुझे अपने घर में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये कीजिए आप ये कीजिए। मैं जब अपना योग स्टार्ट करता हूं तो मेरे 1.5 साल का बच्चा है वो खुद योग करने लग जाता है मुझे देख के, मेरी 5 साल की गुड़िया है वो योग, मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता। तो आप जब खुद करेंगे तो सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप सेट करेंगे। हाँ जी हाँ जी, उनके सामने कीजिए, आप पार्क में जाके मत कीजिए, उनके सामने कीजिए, डेली कीजिए, धीरे धीरे वो करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड कि हमें बच्चों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग छोटी छोटी चीजें इंक्लूड कर देनी है। जैसे आजकल के बच्चे मोस्टली क्या है, फोन पे रहते हैं, तो हमें उनको बाहर निकाल के खेलने के लिए प्रमोट करना है। अगर वो खेल नहीं पा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 7 दिन में एक दिन उनको पार्क ले जाना है, या फिर अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पार्क जाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उन्हें हमें ऐसी जगह घूमने ले जाना है जैसे नेचर, आप पहाड़ में कहीं जा रहे हैं, या फिर हमारे कल्चर में काफी जगह आप देखेंगे कि मंदिर बहुत ऊंचाई पर हैं, पहाड़ों पे हैं, ठीक है, यहाँ अपने आसपास भी काफी सारे ऐसे मंदिर है, तो आप वहाँ भी ले जा सकते हैं उनको, वो उनकी आउटिंग भी हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी भी।
3: सवाल है मैडम से
1: जी।
3: मैडम सवाल, मैं है ना छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ ये रेडियो की सुविधा मिलेगी? नहीं मिलेगी?
1: बिल्कुल मिलेगी ना, आप अपने मोबाइल में न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप कोटा लाइव स्टेशन जो आता है वहाँ कोटा का जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको कोटा सुनाई देगा।
3: नहीं मैडम वो तो ठीक है, वो तो उसमें तो नेट की जरूरत पड़ेगी ना।
1: हाँ बिल्कुल पड़ेगी, नेट की तो जरूरत पड़ेगी,
3: जैसे नॉर्मल रेडियो ले जाऊँ तो।
1: हाँ, तो

0: तब तो आप नहीं सुन सकेंगे, तब तो आप नहीं सुन सकेंगे।
1: कितनी दूरी तक सुन सकते हैं अपन
0: ये? अब इसकी दूरी जो है वो बहुत, मैं आपको बताऊं कि इधर आप 12 तक सुन सकते हैं और भी उससे आगे तक झालावाड़ में दरा तक सुन सकते हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बूंदी तक आप सुन सकते हैं,
1: 1000 किलोमीटर दूर है। चलो मैं वो नेट वाला,
0: हाँ वो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर है।
1: जी जी
0: जी, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा ध्यान दिया है
0: जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, जब योगा की बात आती है तो हर इंसान बिजी है, व्यस्त बहुत ज्यादा है,
2: बिल्कुल
0: है ना, और उनका एक जवाब होता है कि जिंदगी को की भाग दौड़ को जिए या फिर योगा करें। तो आपसे एक सवाल कि आखिर कितना, मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम कितना वक्त लगे कि एक इंसान एक संतोषजनक समय दे करके कि हाँ मैं संतोषजनक हूँ कि मैंने योगा किया, कितना समय?
2: देखिए, सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी एक्सरसाइज, योगा और इन सब का 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे तक करते हैं तो वो आपकी बॉडी में मिरेकुलस रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपना टाइम चूज कीजिए कि आप 1.5 घंटा कर पाते हैं, 1 घंटा कर पाते हैं, आधा घंटा कर पाते हैं, 15 मिनट कर पाते हैं, बट उसे स्किप मत कीजिए। वो 15 मिनट 1 साल में पूरा जुड़ के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा अगर आप केवल 15 मिनट ही कर रहे हैं। और अगर 15 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल 5 मिनट ही कीजिए और दिन भर में सेशन डिवाइड कर लीजिए। और इसे जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें, सुबह सबसे बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। हाँ, योगासन आप अभ्यास कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह, क्योंकि उस वक्त प्रकृति जागृत होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उस वक्त आप
0: जी। डॉक्टर साहब, जब आपने अभी कहा कि आप, अच्छा अगर कोई भी अभ्यास है तो जब कोई अभ्यास चुना है, जैसे 1, 2 या 3 जो भी चुना है, तो क्या कोई ऐसा कर सकता है कि आज ये वाला अभ्यास कर लिया 2 दिन, फिर 2 दिन दूसरा कर लिया, क्या ऐसा भी हो सकता है?
2: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पूरे बॉडी को, अगर आपके पास समय कम है तो आप उन अभ्यासों को डिवाइड कर दीजिए 7 डेज के हिसाब से और आप उन्हें उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और श्रोताओं को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए।
0: जी जी जी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो,
3: राम राम।
0: राम राम साहब, कौन बात कर रहे
3: हैं? द्वारिकालाल साहब।
0: द्वारिकालाल जी, कहाँ से बात कर रहे
3: हैं
0: जी?
3: सुनिंदा, सुनिंदा।
0: आपकी आवाज मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा फोन को और करीब लाइए प्लीज।
3: ये कह रहा हूँ मैं,
0: हेलो,
3: फलुंदा की बोल रहा हूँ।
0: फलुंदा, अच्छा तो ठीक है, डॉक्टर साहब से सवाल करें। हाँ हाँ, हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो,
3: पैरों में झंझनाहट।
0: अच्छा, पैरों में झंझनाहट रहती है, चलिए सुनिए सुनिए।
2: बिल्कुल, अगर आपको पैरों में झंझनाहट रहती है तो सबसे पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करनी है, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, और पैरों वाले जितने भी योगा हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप इसको करेंगे तो। और पैरों में झंझनाहट का कारण आपका कमर है, जहां से आपको नसों में दबाव होता है, तो कमर से रिलेटेड योगा आपको थोड़ा किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना है। और डाइट आप भी ठीक कीजिए, आप थोड़ा आप कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए ताकि आपके ब्लॉकेजेस हटें वहां से, और प्रोटीन थोड़ा बढ़ाइए ताकि वहां की मांसपेशियां मजबूत हों। और एक B12 एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट होती है, तो आप अपने B12 का टेस्ट करवाइए। और B12 के मैं जो नेचुरल सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सहजन की पत्तियों का पाउडर, मोरिंगा लीव्स का जो पाउडर है वो आप ले सकते हैं, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, ये बहुत अच्छा। और अभी जो सीजन है आम का, उसकी गुठली का आप पाउडर बना के ले सकते हैं, 1/4 चम्मच सुबह शाम, ये भी B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये आप ले सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का हमारा विषय है योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। आप क्या मानते हैं कि संक्षेप में आप हमें बताएं कि कौन सी बीमारियां हैं जो जीवन शैली से उत्पन्न हो रही हैं?
2: देखिए, पुराने टाइम पे बहुत सी बीमारियां जो होती थी वो इन्फेक्शन से होती थी, उनका बहुत अच्छा कंट्रोल हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी ने कर लिया है, इन्फेक्शन पे वो बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज जो भी है, BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल से होती हैं, इनका कंट्रोल के लिए वो भी यही बताते हैं कि आयुर्वेदा और योग सबसे बेस्ट है। तो हमें आयुर्वेदा और योग के थ्रू ट्राइपॉड अप्रोच अप्लाई करनी है। ट्राइपॉड अप्रोच मतलब आहार, विहार और औषध। आहार में डाइट का ध्यान रखना है हमें, जिसमें मैंने आपको बताया अभी, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाइए, फाइबर थोड़ा आप सही कीजिए। विहार, विहार में योग आ गया है, प्राणायाम आ गया, एक्सरसाइज

0: गया है और औषध आयुर्वेदा मेडिसिन जो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्राइपॉड अप्रोच जब आप रखेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट होंगे, आपके वजन कंट्रोल होना स्टार्ट होंगे, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या ठीक होना स्टार्ट होगी और कैंसर तक की बीमारियों में आप बहुत अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, कॉल कट गया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बीमारियों के बारे में बात की, और एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्कार
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं नाथूलाल कुमावत।
1: जी नाथूलाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: उदयपुर वासी जिला
1: जी
2: बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी, सवाल रखें अपना।
2: मेरा सवाल यह है कि मेरी 80 साल की उम्र है
1: जी,
2: और वैसे मैं एकदम स्वस्थ हूँ, लेकिन कभी कभी पिंडली में दुखता है, पिंडली में दर्द होता है कभी कभी
1: जी।
2: तो इसके लिए कोई योग में उपचार?
1: आप सुने डॉक्टर साहब बता रहे हैं?
0: बिल्कुल
2: जी, मोबाइल पे।
0: बिल्कुल
1: मोबाइल पे सुनिए।
0: बिल्कुल, आपको अगर पिंडलियों में अगर आपको दर्द रहता है तो उसके लिए आप ताड़ासन का अभ्यास कीजिए, वो एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ताड़ासन आप सांस भर के जितना आप होल्ड कर सकते हैं उस पोजीशन को होल्ड कीजिए। सेकंड, आप कोई भी आयुर्वेदा ऑयल जो आपके नियर बाय आयुर्वेदा औषधालय पे उपलब्ध है, जैसे लघु विषगर्भ तेल हो गया है, महानारायण तेल हो गया, उसकी हल्की हल्की मालिश आप करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और उम्र के हिसाब से आपने अपनी 80 साल की उम्र बताई, आप खूब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आप अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही हमारी एजिंग बढ़ती है हमारी मसल लॉस होना स्टार्ट होती है तो सभी मसल्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होंगी। तो प्रोटीन नॉर्मल से ज्यादा लेना होता है, नॉर्मल आदमी को अगर 0.8 से 1 ग्राम पर केजी लेना है तो हमें यहाँ बढ़ाना होता है, थोड़ा 1.5 1.6 तक ले जाना होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास।
3: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर एमएल अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
5: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें,
4: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 0744242322, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत एक फोन कॉल के साथ। हेलो,
6: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
6: चित्रलाल मरुड़ बोल रहा हूँ, ग्राम बाड़ा, जिला बारा से।
1: अच्छा, बारा से बात कर रहे हैं, तो आप मोबाइल पे सुन रहे हैं या रेडियो सेट पर?
6: हाँ, मेरा पूछना ये है कि मैं 13-14 साल से योग प्राणायाम कर रहा हूँ नियमित।
1: नहीं नहीं, आप मोबाइल पे सुन रहे हैं या फिर रेडियो पर? सुन रहे हैं
6: मोबाइल पे।
1: अच्छा अच्छा, आप पूछिए आप सवाल।
6: हाँ, तो मैं 13-14 साल से योग प्राणायाम कर रहा हूँ
1: जी,
6: और थोड़ा आठ राग के हिसाब है, उम्र 72 साल है, लेकिन मेरा बीपी 60 के लगभग आता है, 60 के लगभग।
0: बिल्कुल, आपको मैंने बताया, अभी एक योगाचार्य जी का ही एग्जांपल दिया है। आप कितनी चपाती खाते हैं? बिल्कुल, आपको अपनी चपाती कम करनी है, आपको एक चपाती खानी है और उसके साथ एक कटोरी सोया बड़ी लेनी है, वो सोया बड़ी आपकी लगभग 3 चपाती के बराबर होती है। तो वो एक कटोरी जब आप सोया बड़ी लेंगे तो दिन भर में आपको 100 से 150 ग्राम सोया बड़ी खानी है, और चपाती केवल एक एक सुबह शाम लेनी है। इससे आपको कमजोरी भी नहीं आएगी और शरीर में उल्टा ताकत बढ़ेगी और बीपी कंट्रोल होना स्टार्ट होगा। इसी के साथ आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जैसे आलू, अरबी जैसी सब्जियां, फ्रूट्स, आप लगभग सारे फ्रूट्स कट करके केवल एप्पल ले सकते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए लीजिए जब तक आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, और जैसे बीपी कंट्रोल, आप थोड़े थोड़े फ्रूट्स मिनिमम क्वांटिटी में लेना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा चावल, पोहा जिनमें स्टार्च होता है, ये सब

0: चीजें क्या करती हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में. तो केवल योग करने से, मैंने अभी कचौरी का एग्जांपल दिया था, आप एक कचौरी खाने के लिए आपको 3 घंटे, पचाने के लिए आपको 3 घंटे योग करना पड़ेगा. तो जो आप चपाती खा रहे हैं, आप दूसरे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो जो ब्लॉकेज कर रहा है उसको हटाने के लिए आप उसको योग से कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ता है. आपको दिन भर में 5-5, 6-6 घंटे योग करना पड़ेगा. तो पहले डाइट सही कर लीजिए, एक चपाती खाइए सुबह शाम, और 1 महीने में ही आपकी बीपी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हो सकता है आगे जाके आपकी जो बीपी की टैबलेट से वो भी धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट को इस तरीके से फॉलो कीजिए. सलाद, सब्जी और 1 कटोरी दाल ऐड कर लीजिए, उसमें 1 कटोरी सोया बड़ी जरूर लेना है. तो आपके 4 कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे. यही आप सुबह शाम लीजिए. और चाय फीकी करना स्टार्ट कीजिए, मतलब मीठे से परहेज रहिए, जहां भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उन सभी से परहेज रहिए. ठीक है
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: योग कौन कौन से नहीं करना चाहिए?
0: आप कोई भी जो योग करें उसे धीरे धीरे कीजिए. जैसे काफी लोगों का ये मिथ है कि आप कपालभाति नहीं कर सकते हैं उसे बीपी बढ़ता है, आप उसे बहुत स्लो स्पीड से कीजिए. ठीक है, बिल्कुल स्लो स्पीड से करेंगे तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है
1: जी, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, योगा और ये आजकल की लाइफस्टाइल से जनित बीमारियां, यही हमारा आज का विषय है. और जब लाइफस्टाइल खराब होती है तो कभी कभी बीमारियां सर्जरी तक पहुंच जाती हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो सर्जरी के बाद आयुर्वेद का क्या रोल है और कितना रोल है? कि आयुर्वेद का भी तो रोल है ही, इसके अलावा योग का, योगाभ्यास का क्या रोल है?
0: बिल्कुल, सर्जरी में एक बहुत कॉमन सर्जरी जो फीमेल से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ कि उनको सिजेरियन सेक्शन होता है. अगर आप सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी रेट देखेंगे, और जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पेशेंट हैं जिनको हम डिलीवरी के लिए भेजते हैं पूरा ट्रीटमेंट के बाद, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. जैसे मैं खुद की वाइफ का एग्जांपल दूंगा, उनकी जो डिलीवरी के बाद रिकवरी की जो स्पीड थी वो नॉर्मल लेडीज से लगभग दोगुनी थी. वो फटाफट अपने रिकवरी में आके, और आप अगर उनका शेप देखेंगे तो वो मोटे नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने योगा प्लस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट को उनको फॉलो करवाया, तो उनकी रिकवरी की स्पीड काफी अच्छी रही है. तो हमें ये चीज समझनी है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे अपनी हेल्थ की तरफ तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे.
1: अच्छा,
0: बिल्कुल.
1: जैसे डॉक्टर साहब, आजकल बहुत आम हो गया है, आपको पता है, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, तो क्या बाईपास सर्जरी वाला व्यक्ति भी योगाभ्यास पर जा सकता है?
0: बिल्कुल, जैसे एक छोटा बच्चा है उसे हम बिल्कुल थोड़ा योगा करवाएंगे, कोई अच्छा एथलीट है उसे हम थोड़े अच्छे लेवल पे योगा करवाएंगे, वैसे जैसे ही सर्जरी हुई है, बाईपास हुआ है, उसके बाद भी आप इमीडिएट योगा कर सकते हैं. उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राणायाम. आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये सारी बिल्कुल. उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी रिकवरी बढ़ती जाएगी आप दूसरे योगासनों पे आ सकते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रहा है. हेलो,
2: नमस्कार मैम.
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार
1: जी.
0: हाँ जी नमस्कार,
2: मैं मोहन सिंह हाड़ा बोल रहा हूँ.
1: जी बहुत बहुत स्वागत हाड़ा साहब आपका. कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया एकदम.
1: आपका तो इस समय गार्डन में भी हो सकता है योगाभ्यास ही चल रहा हो.
2: नहीं, घर पहुँच गए हैं.
1: अच्छा,
2: और गार्डन से सीधे आके मैंने कहा चलो कॉल लगाते हैं.
1: जी जी जी, आप सवाल रखिए प्लीज.
2: वहाँ भी ट्राई किया था पर लगा नहीं.
1: जी,
2: तो डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न है कि मैं बिल्कुल मेरी नियमित दिनचर्या है, खान पान संयमित है, सब कुछ ठीक है, 60+ मेरी एज है, लेकिन पिछले 4 सर्दी के बाद से मेरा वेट लगातार बढ़ रहा है. जो मेरा कॉन्स्टेंट रहता था 72-73 के आसपास, अभी वो 78 के आसपास है. अब मैंने डाइट में भी बिल्कुल खाने पीने में पूरा ध्यान रखा है, फल फ्रूट खाते हैं, छाछ दही लेते हैं.
0: बिल्कुल,
2: रोज कम से कम 5 किलोमीटर की रनिंग. और
0: बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया, हमें लगता है कि हम घर में जो खा रहे हैं वो अच्छा है, वो ऐसा नहीं है. मैं खुद डायबिटिक हो गया था अगस्त 2023 में, और मैंने खुद का ट्रीटमेंट किया, और दिसंबर 2023 में मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया. उसके लिए मैंने घर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, जो हम घर में नॉर्मली खाते हैं, चपाती वगैरह, ये सब हमें लगता है ये हेल्दी है. एक्चुअली ये अब हेल्दी नहीं है, उस जमाने के हिसाब से हेल्दी था जब आप पूरा पैदल चलते थे, जब गाड़ियां नहीं थी, उस टाइम हमें ये खाना खाना था. और आज हमें डाइट 360 डिग्री चेंज करनी है. तो आप बहुत छोटा सा प्रयोग कीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने इससे पहले भी बताया. आप केवल एक चपाती लीजिए और उसके साथ प्रोटीन, 1 कटोरी सोया बड़ी लीजिए. अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो एग्स ले सकते हैं.
2: दोबारा बताइए.
0: हाँ जी, सबसे पहले आप 1 चपाती लीजिए, उसके साथ 1 कटोरी फुल सोया बड़ी लीजिए, 1 कटोरी दाल. सोया बड़ी को आप डायरेक्ट लीजिए या फिर उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, गला के नहीं लेना आपको. उसके साथ आपको 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी, सब्जी में आलू और अरबी नहीं लेना. यही डाइट आप शाम को लेंगे, यही डाइट आप सुबह लेंगे. ठीक है, इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर जाएंगे, कार्ब्स कम होंगे, और आप इस डाइट का प्रयोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके फैट्स

0: कम होते जा रहे हैं। पहले महीने से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ जब आप योग करते हैं तो योग में आपको सूर्य नमस्कार अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो वो करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लग रहा है प्रॉपर सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर सूर्य नमस्कार कीजिए और उसके आवर्तन बढ़ाइए, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 11 मिनिमम कीजिए आप। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और ब्रीदिंग में आपका एक्सहेलेशन आपको बढ़ाना है, मतलब जो मैंने अभी एक टेक्निक बताई थी उसमें आप 4 सेकंड के लिए इनहेल करते हैं, 6 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और 8 सेकंड के लिए एक्सहेल करते हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए सुबह शाम कम से कम 15-15 मिनट। इससे आपके फैट लेवल्स बहुत जल्दी कंट्रोल होंगे। मैंने खुद ने आपका 22 खुद ने खुद का 22 किलो फैट लॉस किया है इन्हीं सभी चीजों से। ठीक है,
1: बीपी और शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है।
0: बिल्कुल, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आगे जाके आपको ये समस्या हो सकती है।
1: 4-5 महीने से रेगुलर भोजन है।
0: बिल्कुल, आप यही फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब जैसे अभी आपने फ्रूट की बात की थी और एक साहब का कॉल आया था तो आपने कहा अभी आप सिर्फ एप्पल खाइए, अलग अलग तरह की बातें हैं, कोई कहता है सुबह ही आप सारे सब तरह के फ्रूट्स आप खा लीजिए, कोई कहता है एक अनार 100 बीमार वाली बात, कोई कहता है एक एप्पल, आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो आपकी लिवर को ही पचानी होती है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो फ्रूट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
2: कोई सा भी,
0: हाँ सभी तरह के फ्रूट्स आप खा सकते हैं क्योंकि सभी तरह के फ्रूट्स प्रकृति में होते हैं। लेकिन अगर आप डिजीज हैं, और आज इंडिया में लगभग 100 में से 100% लोग डिजीज हैं, तो वहां हमें देखना पड़ता है और हमें हाई कैलोरी फ्रूट्स जिनमें ग्लाइसेमिक लोड काफी ज्यादा है जैसे केला, आम, चीकू, इन सबको बिल्कुल हटाना होता है।
2: अच्छा।
0: और बाकी फ्रूट्स को लेना होता है। फ्रूट जूस जिसे लोग बहुत हेल्दी मानते हैं, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कोई फ्रूट जूस मत लीजिए। गन्ने का सीजन चल रहा है वो भी अच्छा नहीं है। फ्रूट जूस आपकी बॉडी के लिए नहीं बने हैं क्योंकि जैसे आप फ्रूट जूस लेते हैं बहुत सारी शुगर आप एक साथ डाल देते हैं बॉडी में, तो ये हमें नहीं करना। फ्रूट्स लेने हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। हमारी संस्कृति में फ्रूट्स को बताया गया है एज ए प्रसाद, तो प्रसाद का मतलब होता है क्वांटिटी कम, तो आप कम क्वांटिटी में इसे लेंगे तो ये हेल्दी रहेंगे, आपको उसमें सारे विटामिंस मिनरल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ये लिवर पर लोड डालेगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब आपको डिजीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर है, तो आप फ्रूट्स कट कर दीजिए क्योंकि उसकी जो फ्रक्टोज है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लिवर को अपना काम नहीं करने देगी और आपकी जो हीलिंग है वो कम होगी।
2: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं और फिर से कॉल तो कट गया है लेकिन अब एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
4: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
4: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और डॉक्टर साहब से चलते चलते एक जरूरी संदेश जानेंगे लेकिन एक और संदेश के बाद।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर साहब, आज का विषय योग और आयुर्वेद से जीवन शैली जनित बीमारियों का उपचार। तो डॉक्टर कपिल सैनी, आपने हमारे आज के जितने भी सवालात थे आपने बहुत अच्छी तरीके से उनके उत्तर दिए, और हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स के भी आपने बहुत बेहतर तरीके से सबके जवाब दिए। अब चलते चलते आज का जो विषय है उस पर एक जरूरी संदेश आपकी तरफ से संक्षेप में।
3: एक जरूरी संदेश यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आपको योग और आयुर्वेद को 365 दिन अपने रूटीन में रखना है। आपको 365 दिन योग करना है, चाहे आपको जैसा भी समय मिले। अगर आपको सुबह समय मिल रहा है तो आप सुबह कीजिए, दिन में कीजिए, शाम को कीजिए। प्राणायाम एक ऐसी चीज है, आप उसे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। और सोने से पहले आप शवासन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। शवासन आपकी पूरे दिन भर के स्ट्रेस को हटा देगा। और आयुर्वेद में जो डाइट बताई हुई है उस डाइट को फॉलो कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जो

0: ट्रीटमेंट होते हैं आपकी छोटी छोटी बीमारियों के लिए, उसे आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद फिर जब आपको लगता है कि आपको रिलैक्स नहीं मिला है, सेकंड ऑप्शन में आप एलोपैथी को रखिए, तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा और ये पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत सुंदर संदेश। और हम तमाम सुनने वालों से भी कहना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम था ये आपने सुना, और हमारे श्रोताओं ने भी हमें समय दिया, हमें फोन कॉल्स किए और बहुत अच्छे अच्छे सवालों से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो अब जाने से पहले इतना बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के लिए संयोजन रहा हिमांशु नावा का, और मैं आपकी रेडियो साथी तरन्नुम नाज़, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर कपिल सैनी। तो डॉक्टर कपिल सैनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपका दिन शुभ रहे, और आप इसी तरह से अपने आपका जो ये आप डॉक्टर हैं एक, और आपकी जो शिक्षा है उससे, और आपने जो भी आज हमें सबको बताया उससे भी आप हमें लाभान्वित करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोता अब सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल नई बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है, और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। JDC सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
4: जो जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने CCC सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है, उनको जैसे आज हमने बुला रखा है, और जिनमें अभी थोड़े से

0: काम है उनको, जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारे 6000 से ज्यादा ट्रिपल सी पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
1: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूंगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रदेश में गिवअप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रूपये की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिवअप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने CBI की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
3: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर अजमेर में 40

0: 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत आपकी नजर कर रहे हैं लव स्टोरी फिल्म से। लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो पीछे छूट कर भी दिल के बेहद करीब होते हैं। वो पल, वो लोग, वो बातें सब मिलकर बन जाती हैं यादें। और यादों की यही खूबसूरती है कि वो दूर होकर भी हमें उनके करीब होने का एहसास कराती है जो हमारे दिल में बसे होते हैं। आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है दिल एक मंदिर फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, मौसिकी शंकर जयकिशन की, और नगमा निगार हैं शैलेंद्र।

प्रेम पुजारी फिल्म से सुना आपने ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के लिए शब्द लिखे नीरज ने और संगीत से सजाया आरडी बर्मन में। आइए श्रोताओ अब सुनते हैं हम ये अगला गीत। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में मदारी फिल्म का गीत, गीतकार फारूक कैसर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, प्रातः के 9:30 होने को हैं। हमारे श्रोता और विशेष तौर से हमारी श्रोता बहनें इंतजार कर रही हैं अगले कार्यक्रम का, जो है उनका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम। तो हम लेकर हाजिर हैं अब आज का घर आंगन कार्यक्रम।

घर आंगण कार्यक्रम सुनवा वाली संधि मां की बण्या ने ममता बणा की आडीसू घणो घणो राम राम। बण्यो आशा करा छा क थाई बदलता मौसम में परिवार सहित मजा मई होगी। बण्यो जब परिवार का संधा मनक स्वस्थ और मस्त रेव छे तो आपनी बण्या भी खुश रेव छे। बण्यो आपनी माँ बण्या ही परिवार की धुरी रेव छे। खबा को मतलब छे के यदि आपनी माँ बण्या स्वस्थ और मस्त रेव छे तो आपनो पूरो परिवार भी स्वस्थ रेव छे। खबा को मतलब यही छे के एक स्वस्थ परिवार की नींव राखवा में आपनी माँ बण्या की ही अहम भूमिका रेव छे। पण बण्यो आपना बड़ा बूढ़ा क्यों छे ना के पति और पत्नी एक गाड़ी का दो पहिया की नाई रेव छे और जब दोनी मलका एक साथ चाले छे। खबा को मतलब छे के अपनी अपनी जिम्मेदारी चौकासू और समझदारी का साथ निभाव छे तो परिवार रूपी गाड़ी आगे बढ़ती ही जाओ छे और यह परिवार रूपी गाड़ी समाज और राष्ट्र का विकास में एक अहम भूमिका भी निभाव छे। बण्यो जी प्रकार अपनी माँ बण्या अपना घर घरा बारा बाल बच्चा और बड़ा बूढ़ा की देख रेख ना अपनी अहम जिम्मेदारी समझे छे वशा ही अपना पुरुष भाई भी परिवार का भरण पोषण नहीं अपनी अहम जिम्मेदारी समझे छे और समझनी भी चाहिए। और ये अपना भाई पति पिता इस जिम्मेदारी ने निभावा के लिए अपनी आडीसू संदा प्रयास भी करता रेव छे। यहाँ की मानसिकता रेव छे कि यहाँ को परिवार भी समाज गांव शहर में विकास करे और हर एक सुविधा को लाभ उठा सके। बण्यो अपना परिवार की हर एक जरूरत न पूरी करवा के लिए कई बार अपना भाई बहन कमाबा खाबा के लिए विदेश भी चला जाओ छे और वहां सु अपना परिवार की जरूरत के लिए पीसा कोड़ी भेजता रहो छे। बण्यो परिवार का भरण पोषण सु बात याद आई का आज मतलब का 16 जून न अपन मना रहा छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस और वो दिवस छे अंतरराष्ट्रीय परिवार भरण पोषण दिवस। बण्यो यू दिवस मनावा को मुख्य उद्देश्य ही विश्व समुदाय को ध्यान व प्रवासी श्रमिका की ओर आकर्षित करवो छे जाका योगदान सु लाखों परिवार को जीवन चाले छे। बण्यो यो दन केवल आर्थिक गतिविधियां को ही प्रतीक कोई न बल्कि परिवार त्याग जिम्मेदारी और सामाजिक विकास को भी प्रतीक छे। बण्यो यहाँ परिवार भरण पोषण की राशि आर्थिक सहायता के साथ साथ ही परिवार का जीवन स्तर न सुधारवा में बाल बच्चा की शिक्षा न सुनिश्चित करवा में और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावा के साथ ही परिवार का छोका भविष्य न सुरक्षित करवा को भी माध्यम छ। और बण्यो जब ई राशि सु आपनो परिवार आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूत हो छ तो आपनो समाज और राष्ट्र भी मजबूत बने छ। और बण्यो जब विदेशी मुद्रा अपना देश में आओ छ तो आपनो राष्ट्र वित्तीय स्तर पर मजबूती प्राप्त करे छ। तो कहीं न कहीं यह परिवार भरण पोषण राशि अपना परिवार के जरिए देश सेवा में ही काम आओ छ। बण्यो बाता चीता तो नरी कर ली और आगे भी करेंगा और आज छ अपना मंगलवार तो क्यूँ न फैली एक लोकगीत सुन लेवा।

0: કરાતા રહે છે. આજ ઈ ક્રમમાં આપણા બીચ પધારી છે શ્રીમતી સુમન મીણા, જો કૃષિ અધિકારી છે. બન્યો દનાદન મંગાઈ આસમાન છૂતી જારી છે. અશામાં એક કી કમાઈશું, ઘર કો ખર્ચ ચાલવો ભી મુશ્કેલ છે, થાય એ ભી જાણો છો. તો બણે છાવ છે કે વો ભી કોઈ ને કોઈ કામ કરે ઓર ઘરમાં આર્થિક રૂપ સુ સહયોગ કરે. બણ્યો એક કામ અશુઈ છે, બાગવાની કરવો, જી શું ઘર કે આમદની તો બળગી સહી ઓર સાથ હી સાથ આપણ પર્યાવરણ કે તાઈ સુરક્ષિત કરવામાં ભી સહયોગ દે સકા છા. સુમનજી, કાર્યક્રમ ઘર આંગણામાં આપકો ઘણો ઘણો સ્વાગત છે. રામ રામ સાહેબ.
1: રામ રામ.
0: સુમનજી, આપની વાતચીત કો વિષય છે કે મહિલાએ કેસે બઢાએ બાગવાની સે આમદની. પહેલી તો આપસુ યુહી પ્રશ્ન છે, આપ કૃષિ કા ક્ષેત્રમાં કશે આઈ?
1: 11वीं 12वीं में मेरे पास बायो था, उसके बाद मैंने जेट का एग्जाम दिया था, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है.
0: हाँ हाँ.
1: उससे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया.
0: बिल्कुल.
1: और बीएससी एग्रीकल्चर की, उसके बाद आईसीआर का एग्जाम दिया.
0: अच्छा अच्छा.
1: राहुरी से महाराष्ट्र में है, पीएचडी उदयपुर से की.
0: अच्छा अच्छा.
1: वो भी इंटरव्यू के द्वारा हुआ. इसमें लड़कियों को काफी सहायता मिलती है.
0: बिल्कुल. तो सुमन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी की पहले तो बहुत कम महिलाएं इस क्षेत्र में आउची, पर अब क्यों रुझान बढ़ रहे बढ़ने कृषि का क्षेत्र में?
1: एक तो इसमें लड़कियां पहले भी कम थी और स्कोप अच्छा है, नौकरी लगने के चांसेस है इसमें, और इससे एक तरह से बोले चहुंमुखी रास्ता खुल जाता है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: इसमें हमारे साथ पढ़ने वाले कोई बैंक में निकल गए, कोई मतलब वैज्ञानिक बने.
0: अच्छा.
1: कोई स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, डबल ए हुए है, और काफी स्कोप खुल जाता है. तो फिर लड़की को चाहिए कि भाई जॉब चाहिए हमें, तो इसी वजह से बच्चों का इसमें रुझान बढ़ा है.
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है. कृषि में रोजगार का अवसर बहुत जरूरत है, इसमें आगे बढ़वा. अब अपन अपनी बातचीत का विषय पर आओ जा. ग्रामीण क्षेत्र में अपन देख रहे हैं खेती बाड़ी को काम हर बण कर, बागवानी की तरफ वो कशा रुझान कर, यह बताओ आप.
1: बागवानी की तरफ रुझान तो वैसे वो देख के ज्यादा हो सकती है, तो हमारे कई प्रोग्राम है, ट्रेनिंग वगैरह है, सब विभाग के द्वारा कराया जाता है.
0: अच्छा अच्छा.
1: सबसे पहले ये है कि शुरुआत कैसे करें, मतलब अपने लेवल पे ही वो कुछ करना चाहती हैं महिलाएं, और वो कैसे अपना पैसा बढ़ा दे, तो उसके लिए नर्सरी से स्टार्ट करें.
0: अच्छा.
1: नर्सरी में इतना खर्चा तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो वहीं पर कुछ अपने छपरा टाइप होता है या फिर कुछ और त्रिपाल वगैरह कुछ जो अपने लोकल सहायता से वो वहाँ पे छाया की व्यवस्था कर ले.
0: बिल्कुल.
1: और उसी में चारों तरफ से अपने जैसे सरसों कटती है तो उसकी जो तूड़ी वगैरह है उसको बिछा के और उसको नीचे बिछा दे और साइड में फिर शेड बना के और एक छाया रूपी नुमा संरचना तैयार करके वो अपने लेवल पे भी बहुत सस्ते में वो पौधे वगैरह तैयार कर सकती है.
0: बिल्कुल. अब आप नर्सरी की बात कर रहे हो, तो नर्सरी में आपने बने फिर कशा कशा पौधा ले?
1: नर्सरी में पौधे लेने से पहले उसमें एक नर्सरी बेड बना ले, कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक, मतलब चारों तरफ डोली करके और उसमें मिट्टी भर के, कच्ची मिट्टी से बनाना है.
0: हाँ.
1: और वो बेड बना के उसमें फिर पौधे तैयार किए जा सकते हैं.
0: अच्छा,
1: जैसे
0: अच्छा.
1: नींबू के पौधे कर लिए.
0: हाँ,
1: हाँ. संतरे के पौधे कर लिए. अपने हाड़ौती एरिया में संतरा काफी सक्सेस.
0: अच्छा,
1: है.
0: अच्छा.
1: नींबू सक्सेस है और अमरूद सक्सेस है.
0: अच्छा.
1: तो इनकी ये पौध तैयार करके और अपने लेवल पे भी ये बेच सकते हैं. जैसे अब नींबू का पौधा है या संतरे का पौधा है, मार्केट में कभी वो 20 रुपए पर पौधा बिकता है, और नींबू भी अगर अच्छा पौधा तैयार कर लेते हैं तो 20 रुपए 10 रुपए वो मतलब अपने लेवल पे बेच सकती है. अपनी पौधा खुद तैयार करेंगे तो वो अपनी रेट खुद लगाएंगी और इससे आमदनी बढ़ सकती है.
0: बिल्कुल साची की अपनी बने नर्सरी तैयार कर भी आमदनी कर
1: सकते,
0: आमदनी बढ़ा सकते. तो आप ये नर्सरी की बात कर रहे हैं, जो नर्सरी अपन लगा ली, पौधा अपन तैयार कर लिया, पर अपन पौधा तैयार करेंगे कशा?
1: पौधे का ऐसा है, जैसे बीज रूपी जो पौधे हैं वो आप बीज से तैयार कर सकते हैं, और जो ग्राफ्टिंग वाले हैं वो ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं. तो वो ट्रेनिंग वगैरह केबीके पे ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है, उनको ग्राफ्टिंग वगैरह सिखाते हैं.
0: अच्छा, अच्छा.
1: कुछ बडिंग वगैरह है, वो ज्ञान हासिल करके वो लोग अपना कर सकते हैं.
0: बने ये चाहो छो कि नर्सरी तैयार कर बासुफली अगर अपन ट्रेनिंग ले लिया, इनको प्रशिक्षण ले लिया, तो अपना हुनर में और ज्यादा निखार आ सकता है.
1: और इसमें बड़े रूप में बोले तो हाईटेक रूप में अगर अपने पास जमीन है महिलाओं के पास, तो वो बड़े रूप में से हमारे उद्यान विभाग से अनुदान हासिल करके और इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं. और एक बड़े लेवल पे पहले तो अपने हाड़ौती एरिया में कर दे और अदर दूसरे राज्यों तक भी अपन अपना बिजनेस फैला सकते हैं पौधों से, प्लांटेशन करके।
0: बिल्कुल, आज तो नेट को जमानो छे जी। सुमन जी कह जाए पूक जाओ छे सारी सूचना, और बने भी कह जैसे सूचना इंटरनेट से प्राप्त कर ले छे, तो यो तो बहुत बढ़िया रास्तों छे का अपन इंटरनेट बाजार और सारी सूचना ज्ञान हासिल कर सका जा। जब नर्सरी तैयार कर ली और नर्सरी का अपन बेचवा लागे पौधा भी बढ़िया, आपने बताई कि वहाँ की भी बढ़िया रेट आ जाऊ, तो उसमें भी आमदनी।

0: कराई जा सक। सुमन जी, नर्सरी तैयार करवा की आप बात कर रहे छो, तो नर्सरी के अलावा और कशो रस्तो आपन और ज्यादा आमदनी उसू प्राप्त कर सका छा?
1: नर्सरी के अलावा जैसे बगीचा लगा दिया, हाँ, उससे अपन ने बगीचे में से जो फल आए उनको बेच के अपन ने आमदनी कमा ली। इसके अलावा हमारे विभाग से अगर अनुदान लेके आप आगे और भी बहुत अच्छा कमा सकती हैं महिलाएं, जैसे मशरूम की खेती हमें अनुदान देते हैं।
0: अच्छा,
1: तो इसको उगा के अपन जैसे बड़े बड़े होटलों में सप्लाई कर दे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो इसमें महिलाएं हैं ये घर पे भी कर सकती हैं, जैसे जो पशुओं को संभाल रही हैं वो गोबर की खाद बनाकर उसमें जो खाने वाले जो मशरूम है, जैसे डिंगरी मशरूम होता है, बटन मशरूम होता है, उसका बीज लेके और उसको डेवलप करके, और ये एक तरह से खेती है ये मशरूम की, तो इससे डबल ट्रिपल आय अपना कमा सकती हैं।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। तो ये मशरूम की खेती की आप बात कर रहे हैं, इनको बीज मलगो खा?
1: इसका बीज अपने जैसे दिल्ली से भी मंगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश से भी मंगाया जाता है। तो
0: हड़ौती संभाग में कोई ना कहीं,
1: हड़ौती संभाग में नहीं है, इसका बीज हम उदयपुर से भी प्राप्त कर सकते। अच्छा डेवलप करना है तो अपने जैसे पशु है उनके बारे में कंपोस्ट बना ले, कैचू की खाद बना ले। सबसे बड़ी बात, कैचू की खाद जो बनाएगा उसको भी अनुदान है इसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने। तो हर चीज में अनुदान मिल रहा
1: बने,
0: सहायता हर चीज में मिल रही है बने आगे तो बड़ा। सुमन जी, अनुदान सरकार की तरफ से की बागवानी पर अनुदान मिल रहा है, कशा कशा मिल रहा है यह बताओ मां बने।
1: जैसे अभी अपने संतरे के पौधा है जो अपने झालावाड़ में सक्सेस है और कोटा एरिया में भी सक्सेस है, तो जैसे मार्केट में 40-40 रुपए का बिकता है तो वो अपनी सरकार अपन को 20 रुपए में उपलब्ध करा देती है।
0: अच्छा,
1: और अगर कभी रेट 20 रुपए की है तो अपनी सरकार 10 रुपए में उपलब्ध करा देती है, इससे अपना हाथ रेट हो जाती है।
0: या तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने बढ़िया बताई, और काई काई योजना छी मा?
1: जैसे अब मैंने बताया कैचू की खाद बना के भी आप आमदनी कमा सकते हैं, कैचुए जो है आपके बीके से उपलब्ध हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और अपने जैसे अपने सब्जियां वगैरह काटी वो कचरा गोबर का है, जो भैंस गाय पशु पालन अपन करते हैं उसके नीचे जितना भी गंदगी है उसको वहाँ पे डाल दो, इकट्ठा करके उसका खाद बना के, और जब कैचुए उसमें डालेंगे तो एक अच्छी सी उर्वरक खाद अपनी तैयार हो जाएगी, और उसको पैकेट में बंद करके और अपन उसको 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो में अपन बेच सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वाजिबा,
1: ये भी एक बहुत अच्छा,
0: ये तो गुण बढ़िया बताइए आपने। घर बैठे खाई न जानो आपना गोबर से तैयार करनी चाहे, हाँ। और घर बैठे तैयार करनी चाहे और आमदनी भी बढ़ेगी,
1: आमदनी के बर्मी कंपोस्ट वगैरह यूनिट वगैरह बना के अपन
0: अच्छा
1: खाद तैयार कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और इसको अगर आप अपनी फसल है जैसे बागवानी के अलावा और फसल है या सब्जी है पौधे है उनमें अगर इसको डालते हैं तो बहुत अच्छा अपना उत्पादन होगा और डबल रेट अपन को मिल पाएगी।
0: बहुत बढ़िया भाई, बागवानी की तो आपने बात कर ली सुमन जी, फूलों की खेती यहाँ के बारे में भी कान का ही बताओ ना थोड़ा सुमा का ताई का कशा कर सकते।
1: फूलों की खेती में है जैसे कि अपन गुलाब का पौधा तैयार कर सकते हैं, वही नर्सरी में वापिस आ जाए तो नर्सरी में अपन वही पौधा तैयार कर सकते हैं, जैसे गुलदाउदी हो गया, और जैसे गुलाब अगर अपन अच्छी तरह तैयार करते हैं तो उसकी भी रेट अपन को अच्छी मिल जाती है।
0: बिल्कुल, पहले तो इनकी किस्म अच्छी होनी चाहिए,
1: किस्म अच्छी होनी चाहिए और इससे भी आय बढ़ा सकती है महिलाएं। जैसे गुलाब का फूल अपन लगाते हैं तो उससे गुलाब जल बनता है और जैसे गुलकंद वगैरह बनता है, तो अपन फूल बेच के उससे आमदनी कमा सकते हैं जहाँ बिजनेस चल रहा है गुलाब जल वगैरह का।
0: बिल्कुल, मतलब शुरू से ले रहे आखिरी तक अपन आमदनी कर सकते,
1: आमदनी कर सकते हैं।
0: जैसे आंवड़ा लगा दियो, संतरा लगा दियो, यहाँ का भी तो कतरी जगह, कोई का जूस बना चाह, कोई का अंडीर जैम और जेली, तो यही भी तो कर सकते हैं अपनी बने।
1: अब जैसे ये अब आते हैं अपन ने सारा बगीचा वगैरह लगा लिया, अपने पास चीजें हो गई, अब हाँ। उनकी तुड़ाई वगैरह के बाद अपन अब क्या करें, अपने पास माल ज्यादा हो गया तो
0: बिल्कुल यही प्रश्न है हमारो। अब आप बगीचों तो तैयार कर लो, सब कुछ तैयार हो गयो, ऊपर फल भी आबला आ गया, अब फलों को अपन काई करा, उसू भी तो अपन आमदनी बढ़ा सका चा।
1: अब बात ये आती है अपने पास की भाई संतरा काफी हो गया, अमरूद काफी हो गया, अपना सड़ना गलना चालू हो गया।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए संतरे को ले लिया तो उसको भी अपन रस निकाल के जूस निकाल के उसको पैकिंग करके अपन बेच सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: गांव में भी अपन बेच सकते हैं और उनको जब ऑफ सीजन हो जाए, जैसे कोल्ड स्टोरेज अगर अपन डेवलप कर लेते हैं समूह बना के,
0: बिल्कुल,
1: तो उसको जैसे अपना यहाँ से संतरा है दुबई जा रहा है।
0: एक बात और पूछूंगी आपसे, बीच में रोकूंगी आपका ताई, का समूह बनावा की आपने बात करी, कोल्ड स्टोरेज को और समूह को काई तालमेल च?
1: ये है कि खर्चा कम आ जाएगा, नहीं तो सिंगल किसान भी बना सकता है, बगीचा होना चाहिए है और खेती होनी चाहिए,
0: दो चार बने एक साथ मिल जाओ और फिर उनको कोल्ड स्टोरेज को काम जो बागवानी करी चाहे फल फूल आकर रख सकते
1: हैं। देखा जाए तो अपन काफी आमदनी कर सकते हैं।

0: और जैसे आंवला है, आंवले के अपन कैंडी बना लेते हैं, उसमें
1: बिल्कुल
0: मीठी कैंडी अलग बना दो, नमकीन
1: हाँ
0: कैंडी अलग बना दो, और छोटी छोटी थैली में पैकेट बना के अपन उसको बाजार में ला सकते हैं और अपन को अच्छा पैसा मिल सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: यहाँ का तो प्रशिक्षण भी दिया जाओ सुमन जी।
0: प्रशिक्षण टाइम टाइम से दिए जाता
1: हाँ,
0: है।
1: अब सुमन जी और कहीं कहीं रास्ता च बनया और कशा आए बढ़ा सका जब बागवानी में?
0: मूल्य संवर्धन इसको बोलते हैं।
1: अच्छा
0: बागवानी के जो भी फल वगैरह तुड़ाई वगैरह हो गई, तब फलों में जैसे जूस हो गया, कैंडी हो गया, मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, ये सब अपन बना के अपने लेवल पे बना के तो अपन आगे बाजार में बेच सकते हैं, और या फिर अपने गांव में भी छोटे लेवल पे बेच सकते हैं। संतरे में हो गया, जैसे उसकी अपन मिठाई भी चल गई है तो अपन मिठाई बना के उसके विधि समझ के
1: अच्छा
0: उसको
1: अच्छा
0: बेच सकते हैं। अगर गांव में अपनी नहीं बिके तो अपन उसको बना के अपन शहर
1: हाँ
0: में किसी बड़ी दुकान पे भी अपन सप्लाई कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जो संतरे के पौधे हैं और उसका छोटा फल जो अपना गिरता है, उसको कचरा ना समझिए और उसको इकट्ठा कीजिए।
1: बिल्कुल
0: महिलाओं में काफी जो बीमारियां हो रही है,
1: हाँ
0: उसका जो कस है वो निकाल के, और बाहर की जो कंपनियां हैं कैंसर वगैरह में है, यूज कर रही हैं, और वो 40 रुपए किलो बिकता है।
1: तो
0: तो
1: मतलब जो वो फली बना पाके फल गड़ जाओ जो
0: गिर
1: वहां की
0: जाते
1: बात कर
0: हैं।
1: रहे थे ना
0: हाँ,
1: आप?
0: फल पकने
1: बिल्कुल
0: से पहले छोटे
1: हाँ,
0: साइज के हो उनको इकट्ठा करो और उनको भी आप बेच सकते हो,
1: वाह जी वाह, ये तो
0: उनको
1: बहुत
0: भी
1: बढ़िया बात
0: खरीद।
1: बताई।
0: और जो फूल है उनके गुलदस्ते बनाओ आप, बना के उनको बाजार में बेच के
1: बिल्कुल
0: अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फूलों की माला है, फूल मंदिर के सामने वगैरह अपन
1: हाँ
0: बेच सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो देखा जाए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बस ये है कि मन में ठान ले अपन कि भाई अपन को पैसा कमाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और चालता चालता माँ की बने काई सलाह देबा चाहोगा आप को वो बागवानी सु ज्यादा जुड़ो?
0: बागवानी से यह है, एक तो विभाग से जुड़े रहे ये, और अगर विभाग तक नहीं पहुंच पा रही है तो अपने घर में से किसी को भेज के बच्चे भी जाके जानकारी ले सकता है।
1: मतलब सारी जानकारी को यही सार छ कर जागरूकता जरूर होनी चाहिए। आपन जागरूक रहेंगा तो हर काम करवामा आपन ही आसान होगो। बिल्कुल सुमन जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और आमदनी का इतना सारा रास्ता खोल दे आपने बढ़िया का ताई, अगर वो एक भी रास्ता चुना रहो उमा भी सफल हो जाओ ना तो भी चारू मेरे पीछो ही पीछो नजर आओ। और सुमन जी आप मा का कार्यक्रम में पधारे और इतनी बढ़िया जानकारी बढ़िया का ताई अवगत करायो, ई का लेखा आपको घनो धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: बण्याऊ अबार आपणने सुनी पूर्व प्रसारित भेटवार्ता श्रीमती सुमन मीणा जी ने। आपण कले घर बैठे ही देखो आपण थोड़ो सो प्रशिक्षण लेकर बागवानी के जरिए अपनी आमदनी ने बढ़ा सका छा और परिवार ने आर्थिक स्तर पर मजबूत कर सका छा।
3: श्रोताव एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: बण्यों या तो बात हुई परिवार ना आर्थिक स्तर पर मजबूत पर रखी और अब बात करा अपनी माँ बण्या का स्वास्थ्य का स्तर के तो बण्यों माँ आपने बता दिया का अपना स्वास्थ्य न छोको बरो राखबो अपना ही हाथ की बात रहो छे। एक तो बण्यों अपन शारीरिक स्वच्छता का लारा लारा ही अपनी मानसिकता न भी स्वच्छ रखनी चाहिए और एक बात कतई दिमाग सुखाड़ देनी चाहिए का घर का काम धंधा सु ही अपनो व्यायाम हो गयो आपन न कोई कसरत करवा की जरूरत कोई ना बण्यो यह बात कतई गलत छ। आपन माँ बण्या न घर का काम धाम का लारा लारा ही सुबह शाम थोड़ो टहलबा की आदत डालनी चाहिए। इनके अलावा कोई योग प्रशिक्षक सु शिक्षा लेकर योग व्यायाम ध्यान जरूर करनी चाहिए। बण्यो योग व्यायाम ध्यान सु आपनो शरीर शारीरिक और मानसिक रूप सु मजबूत बने छे। इसलिए आपन सभ्या न हल्को फुल्को व्यायाम ध्यान और योग अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार रोजिना करनी ही चाहिए। बण्यो जब अपनी माँ बण्या स्वस्थ रहे छे तो घरा बारा का दो काम भी ज्यादा ही करे छे। बण्यो अपना बड़ा बूढ़ा केवू भी छे न के एक चार दीवारी का मकान न घर बनावा में अपनी माँ बण्या की अहम भूमिका रहे छे। अपनी माँ बण्या छाव तो चार दीवारी न घर बना देव छे और यही छाव तो स्वर्ग रूपी घर न भी नरक में बदल देव छे। बण्यो अपना बड़ा बूढ़ा केवू छे के ई जबान में ही रस छे और ई जबान में ही जहर भी छे। खबा को मतलब छे के अपनी माँ बण्या छाव तो ई जुबान के द्वारा मीठी वाणी बोलकर संदा परिवार ने एकजुट राख सके छे और ई जुबान सु ही बोली गई कड़वी बाता संदा परिवार में जहर भी घोल सके छे और परिवार न तोड़ भी सके छे। एक महान संत न की भी छे के आपन सभ्या न हमेशा तोल मोल के ही बोलनी चाहिए और वो बाता कतई न बोलनी चाहिए जो आपन न स्वयं का लेख कतई पसंद कोई न बण्यो। हर परिवार में छोटी मोटी बाता और ख्या सुनी होती रहे छे और आपन बड़ा बूढ़ा यह भी खेव छे के घर में जहाँ चार बर्तन होगा तो आपस में बा जगाई सही पण बण्यो माँ को तो आप संधि बण्या सुखबो छे के एक संयुक्त परिवार आपन न भी सामाजिक आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाओ छे। इसलिए अपनी माँ बण्या ने छोटी मोटी बातों के लिए नजरअंदाज कर देनी चाहिए। आपन न परिवार का दूसरा मन ख्या सु मतभेद कर लेनी चाहिए पण मनभेद कभी दिमाग में भी न लानी चाहिए। बण्यो अपनी माँ बण्या ने चाहिए कि अपना छोटा छोटा बाल बच्चा न बड़ा बूढ़ा को सम्मान छोटा सु प्रेम करवो सिखाओ साथ ही अपनी अवस्था का अनुकूल दूसरा की मदद कर वो भी सिखाओ। बण्यो जब परिवार का संदा मनक एक दूसरा की मदद करे छे तो परिवार का मनख्या में एक जुटता भी बढ़े छे। बण्यो वशा भी आपने एक कहावत भी प्रचलित छे के बंदी बुहारी लाख की और बकरी बुहारी खाक की तो माँ को तो आप संधि बण्या सुखबो छे के अपना संदा परिवार ने बांध्या राखवा में अपनी आड़ी सु प्रयास करता रहनी चाहिए और वशा भी अपनी बण्या तो सदा ईश्वर सु यही मांग छे।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना

0: और बणियों आज की बाता चीता बस यही तक। फिर मलंगा नई नई बात और जानकारियां गलारा सभ्या कताई ममता बणा की आडिसू घणो घणो राम राम।
1: श्रोता सुन रहे थे घर आंगन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका,

0: का योग है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
0: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी, वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवाया। जो मधुबन खुशबू देता है, यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया।
1: फास्टिंग हो गया।

0: गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए, हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने का हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद

0: हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती

0: क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उसपे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब उसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आपको थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी,
1: वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने

0: शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
0: जी,
1: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं, और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं।
0: तो लंगड़ा बोला,
3: चलो चलो भाग चलते हैं।
0: तो भिखारी बोला,
4: अरे जल्दी करो,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है,
2: और
3: वही आपको

0: सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित नहीं करेंगी।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती
0: है। जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम

0: रम पम पम हंसो और हंसाया करो
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम हंसो।
2: शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष है ऑफिस में है तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको, आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा
2: और फिर तो से अपना काम करना।
3: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
2: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
3: वहीं पर आप थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट

0: लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिससे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेन जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हाल क्या है दिलों का, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, अनोखी अदा ये था फिल्म का नाम।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। राजेश रेड्डी ने इसे लिखा था, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और आईना ये था एल्बम का नाम।

0: लकी अली को अभी आप सुन रहे थे अक्स एल्बम से। ये गीत लिखा लकी अली ने और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक

0: बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग, और लीजिए सुनिए अब ये गीत बरसात की रात फिल्म से।

बरसात की रात से कवाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रोशन का संगीत था।

तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर।

0: दीवाना एल्बम से आप सुन रहे थे सोनू निगम को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और साजिद वाजिद का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आलिशाज लव नोट, ये एल्बम से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। आलिशा की आवाज में और साथ दिया था बाबुल सुप्रियो ने, संदीप चौटा ने संगीत दिया, नितिन रायकवार ने इसे लिखा।

शान और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। इस गीत में दिल चाहता है फिल्म का नाम था। जावेद अख्तर ने इसे लिखा। शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: तलत अजीज की आवाज में ये रचना अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और FM 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब हम लेकर हाजिर हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और

0: शिका आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
1: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

0: एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य

0: चेहरे में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।

0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15, 14
1: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
2: 13, 12, 11 ओह
1: जॉन्सी,
2: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए।
1: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो? 6, now it's 6, 5, 4 ओह
1: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
2: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
2: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ,
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
1: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉन्सी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
3: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।

0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ,
1: हाँ,
4: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी।

0: हाँ जॉन सी ने वहीं पर है, वहीं पर है।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
2: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
0: जॉन सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
3: थैंक यू
0: जॉन सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
0: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
3: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉन सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
3: ओह,
0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
0: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन सी,
3: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया,
3: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
3: मास्टरपीस।
0: हाँ
3: मास्टरपीस। आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉन सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन सी और सू की आंखों से कृतज्ञ

0: के आंसू बह रहे थे। मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अब हमारे श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए.आर. रहमान और चिन्मयी की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा। ए.आर. रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित

0: विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
1: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटोदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोडुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से दिन में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

नहीं पहने। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफर कारवां के हम सफर साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती, अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है, यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही खतों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने जमाने की खुशबू, वो खत लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियां कब लिखी? मोबाइल पर नहीं,

SMS पर नहीं, WhatsApp पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की। उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ। वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं। फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से एक खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिये का इंतजार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला। शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकेंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है। ये प्यार, मिठास, नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है इस फिल्म में। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना? सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है।

और खतरा खतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतजार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि खत लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं। एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं, और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है, मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए, ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत बसेरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे हैं पर अब नहीं लिखते, और काफी दिनों के बाद अभी 15 दिन पहले ही मनचाहे गीत के लिए विविध भारती में पत्र लिखा, अभी तक शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल शामिल होगा, आप बस खत लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं उस गीत के बारे में, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत के स्टार्टिंग में कांच के ग्लास पे जो संगीत इजाद किया गया है आर डी बर्मन द्वारा, वो काबिले तारीफ है, और वो भी अक्सर किचन में कांच के बर्तनों पर ऐसी किसी धुन की तलाश में रहते हैं और बहुत मजा आता है। ये गीत उन्होंने जहन में सोचा था, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी हाँ, यादों की बारात जिस सिनेमा हॉल में देखी थी वो सिनेमा हॉल टूटकर मॉल में परिवर्तित हो गया है, और अब तो वक्त अलग है, लेकिन उस वक्त 160 रुपए में फिल्म देखी थी यार, 160 रुपए का टिकट आया था, इतने सस्ते में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। जी हाँ, वक्त बदलता है बहुत कुछ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें कॉल किया है ऑफिस में और कहा है कि ये आप जो मैसेजेस लिख रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, फैमिली मेंबर की तरह बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को, विविध भारती को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वहीं है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? जरूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हो, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हों,

या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है, मुझे लिख भेजिए। इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताजा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहां जहां उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहां पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाजत चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफर में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है और साथ ही जल प्रदूषण का खतरा भी सर उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है, जल यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में जी

0: G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक VIVATEC शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका

फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि

0: सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115

0: अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने। यह था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एस टी बर्मन की तर्ज थी।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को। इस गीत में मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होते देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि

0: इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
0: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
0: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बोतल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
0: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहां बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
0: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
0: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
0: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
1: ये तो होता है,
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम, केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी तो बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे,
1: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
0: किस तरीके से इसको समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
1: क्या बात है,
0: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
0: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
1: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की कही है,
0: अक्सर
1: विषय रखा है
0: हो जाती है
1: घरेलू बजट, बाप रे,
0: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
1: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
0: जी

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी FAD ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवारों को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना।
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेक्षण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे तो कितनी खुशी होती
1: है कि ना, कि अब चलो ये जरूरतें हमारी
0: हम पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हमारे साथ।

0: और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं

0: संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती है, क्योंकि भाई जीवन है उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी,
1: बिल्कुल
0: जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके ऊपर।
1: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
0: बिल्कुल, इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा।
1: बिल्कुल,
0: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता।
1: हाँ।
0: वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर लेता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
1: कि कौवा
0: कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता।
1: हाँ।
0: तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
1: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
0: नहीं आता किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तंग करने वाले परेशान करने वाले है ना बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
0: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
1: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना
0: भारती।
1: तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती है, और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
0: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
1: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभालकर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा
1: हो जाता है।
0: जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए,
1: बिल्कुल
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा विस्तार से उसे बताने की कोशिश मत करें,
1: अपनी सफाई देना।
0: हाँ, उसको वही सफाई ज्यादा अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है। ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, हाँ। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाती है।

0: कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके लिए खड़ी हो,
0: सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: जी,

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूं और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: है ना। एक थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज के सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जा जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो
0: आप सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने

0: आपसे निर्णय लीजिए,
1: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है, है ना, कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा, हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
0: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
1: तब कैसे होते हैं,
0: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
1: ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना। आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
0: और इसके लिए जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखें, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: और बाद में हमें उसका पछतावा भी होता है।
1: हाँ।
0: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखे, बोलना
1: समझ
0: चाहिए।
1: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सबकी आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है,
0: क्योंकि लगता है ना उनको, जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ,
0: क्योंकि ये चाटुकारिता में आता है।
1: और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
1: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहे कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर आरती आज तारीफ नहीं की।
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
0: जी।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वेब फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5 से 7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं। ये कितना सुंदर दिख रहा है वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की। और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम

0: उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
1: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
1: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: और बहुत ही अच्छी बात है ये।
1: और
0: आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
1: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के, लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर बात करें हम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
1: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है चाय की तरह
0: जी।
2: जरा नजरों से

0: तो दूर के ढोल सुहावने कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देखे तो देखने में इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं, और जब वो आती है हमारे पास तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने।
0: बिल्कुल, और फिर वापस करो ये करो, गुस्सा इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस।
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है। उदाहरण जैसे गांव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं

0: दूर के तो ढोली सुहावने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया है। और एक और मजे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देंगे। जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कैसा अजीब अजीब सा है वो जगह। तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
0: चमकता है, सुंदर लगता है। हम उसकी तुलना करते हैं हर एक चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा।
1: जी जी जी, लेकिन जब से वहाँ पे पहुंचे तब से थोड़ा
0: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब, एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है। कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है। नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी क्रूरता भी दिखाई देने लग जाती है।
1: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलिया रलिया
0: रलियामणा।
1: जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वही अभी हमने जो
0: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
1: बिल्कुल।
0: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, ये हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
1: वैसे सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाई और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए लेके। तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती कि दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
1: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
0: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्मपत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियां और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक श्रोता का हम लोगों ने दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा इनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके से समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है। जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार। सेल्युलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्युलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था, 14वीं का चांद।

0: 14वीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्ट का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज को ले लेते थे। फिर

0: चुपके से उसको करा के मैं कहा अरे मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो जरूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, तो उसको उतना डिसेंटली और उतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे।

0: वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वो रिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात

0: करनी आप उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ. मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है. यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से. तो बोले नहीं नहीं भैया जी आप बहुत मीम मेक निकालते हैं, आप नहीं उसी से लेते हैं. तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव. और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं. अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं.
1: आपको कहा?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको कहते थे. दिल दिया उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
1: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि
0: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूं होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ. तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा. और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं. मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है. तो मेरी आदत थी यू नो मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ जैसे उन्होंने कहते जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है. मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता. तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन. तो फिर भी मैं बड़ी काफी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला. तो मैं कहूँ पढ़ती रही तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई. तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज. मैंने कहा कब, तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है. तो आप अपने खुल के जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं बहिदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए. मैंने कहा अच्छी बात है.
1: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का. इसका कोई गाना सुना दिया जाए
0: आदमी का. हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
1: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
0: वो समथिंग. हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे, मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ, साधना बहुत अच्छे थे, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो ओ हो, इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओ हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में।
0: टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको?
1: नहीं, देखिए लेटली एक दो साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज्यादा ही वायलेंस पे बेस्ड होती थी, और कहानियां रट्टी पट्टी की के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है, एक अच्छी नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, नो इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है, और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
0: आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
1: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस।
0: वो फिल्में देख लें आपकी?
1: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखी। ओ, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी, मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, और दोनों बच्चे मेरे, कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
0: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया है, और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है, साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
1: प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
0: हेमंत कुमार साहब की।
1: हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज, वो बहुत अच्छा था।

0: वीना जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक
1: थे। बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, ऐसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वाज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा
1: बिल्कुल
0: चखा। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं, उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे और मेरे खास बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी, उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं तो मैं नहीं हूं या नहीं तो राजी नहीं है, तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे और वो बहुत मसरूफ थे, अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी मगर देख के फिल्म, मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई

दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो वही वैसे हालात में फिल्म बनी और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू यू नो बहुत। और जो जो रशियन था वो उनके पूरे गाने एक क्या 400

0: भूमिका निभा करके तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं,
1: हाँ मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट. उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है.
0: कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है. उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे. एक गाना उस फिल्म का हमसे सुनाया,
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है.

0: बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई, समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको, बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा, उनको कैसा निर्देशक पाया आपने?
1: पहले उनको समझना जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोकझोंक हो जाती थी छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा, मैं मानती हूँ मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले, कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा, आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
0: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया? कौन सी फिल्म थी वो?
1: अभिजान।
0: अभिजान बंगला आपको आती?
1: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
0: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे?
1: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
0: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
1: हाँ, उन्होंने कहा

0: अब जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए, तो सबने कोरस में कहा है वहीद रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है ऐसे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
2: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
0: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, या बहुत कम पैसे जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
2: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जेरोकम।
0: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मजा नहीं आया वो फिल्म में काम करके।
2: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं, तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विद हिम, वो आई एग्री विद हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
2: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम।
2: जी जी।
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो। तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियां अपने सीन सुना करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
2: अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को,

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो।
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको, गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोरदा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा, ये क्या बात है ये। नहीं क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगी, बोले दो कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
0: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है।

0: तो फिर वो आएंगे
1: उसमें।
0: तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: उनका हम दोनों का गाना अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना है इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा

0: डिफिकल्ट सीन था और एक डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोचा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है. उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे क्योंकि वो महसूस कर रही, ओ ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है. वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ. तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वेदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरे स्टार्टिंग दे दीजिए. अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे. मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूं, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें. वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई.
1: वही गाना सुनते हैं,
0: हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है.

0: कुछ अजीब।
1: वहीदा जी, असी सिंह साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हें की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
2: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं, तो 20 साल बाद नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं, मेरी बहनें थी, तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे, तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी, तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना उन्होंने, मुझे नमस्कार किया, और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे, तो उनकी बीबी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंदा ने कहा नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहां थी नहीं। बोले क्या मतलब आपका वहां नहीं थी, वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए, तो नहीं मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई, तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में, हाँ मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी, तो बोले क्योंकि मैं भी वहीं था। ओ रियली, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको, आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था, तो बोले मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई, और मुझे पता था कि आप मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा, तो बड़ी नाइस ऑफ हिम के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात कर रहे हैं, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे?
2: कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हटकर के भी आप काम कर रही हैं, और खास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपने सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भट जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें कि इसका फ़ायदा क्या है।
0: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपने भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
1: हाँ जी।
0: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

FM 102.03.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त खुशी।
1: और मैं हूँ मुनमुन। स्वागत है आपका युवाओं के अपने जोश से भरे, दिल से जुड़े कार्यक्रम युवाणी में, जहाँ बातें होंगी आपकी, सपने होंगे आपके, और अंदाज होगा बिल्कुल यंगस्टर वाला।
0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कॉलेज की टेंशन, कभी करियर की प्लानिंग, तो कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, इन सब के बीच थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना भी तो जरूरी है।
1: बिल्कुल खुशी, और बस इसी के लिए लेकर आए हैं ढेर सारी पॉजिटिव बातें, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां और प्रेरणा से भरे किस्से, और आपके पसंदीदा गीतों का शानदार साथ।
0: तो चाहे आप सफर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हो, अगले कुछ पल हमारे नाम कर दीजिए,
1: क्योंकि अब शुरू हो चुका है वो सफर जहां हर आवाज में है उत्साह, हर बात में है अपनापन, और हर पल में है युवाओं की धड़कन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं युवाणी सिर्फ आकाशवाणी पर।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: FM 102 और 103.6 माय FM पर FM मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी।
1: दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, और कभी पढ़ाई को लेकर उलझन होती है, कभी करियर को लेकर, तो कभी रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर। और ऐसे समय में मन में कई सवाल उठते हैं और सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल खुशी, और जो ये बात तुमने कही ना, इसी सिचुएशंस को हम कहते हैं दुविधा।
1: हाँ बिल्कुल।

0: और दुविधा के समय अक्सर हम इंटरनेट, दोस्तों या सोशल मीडिया की सलाह लेने लगते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। कोई भी छोटी सी भी परेशानी हो, बस मोबाइल उठाया, एआई से पूछा और जो उसने एआई ने कहा वो हमने फॉलो कर लिया। लेकिन कई बार सबसे सटीक और सच्ची सलाह हमारे अपने घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं।
1: हाँ, और कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और परिवार के अन्य बड़े जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं। उन्होंने सफलताएं भी देखी हैं और चुनौतियों का सामना भी किया है। इसीलिए जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो उनका अनुभव हमें सही दिशा दिखाने में मदद करता है।
0: हाँ, और खुशी, आज के जो तेज रफ्तार जिंदगी में युवा अक्सर सोचते हैं कि वो हर समस्या का हल खुद निकाल लेंगे। जनरली लोग सोचते
1: हैं। और पता है क्या कहते हैं कि आप नहीं समझोगे।
0: हाँ, ये तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने बड़ों से यूथ यही कहता है कि आप नहीं समझोगे,
1: बल्कि हाँ वो तो उस दौर से गुजर चुके हैं।
0: हाँ, और सबसे बड़ी बात, आजकल के जो यूथ है वो सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। और आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बड़ों के अनुभवों को नजरअंदाज कर दें।
1: हाँ,
0: कई बार उनकी एक छोटी सी सलाह भी हमारी बड़ी समस्या को हल कर देती है।
1: हाँ, और दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग केवल सलाह ही नहीं देते बल्कि हमें धैर्य, संयम और पॉजिटिव सोच के साथ रहना भी सिखाते हैं। जब हम किसी निर्णय को लेकर घबराए हुए होते हैं तो उनका मन हमें शांत करना सिखाता है और संतुलित दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास देता है।
0: और आज के दौर में खुशी, जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत आसानी से अवेलेबल है।
1: हाँ,
0: कुछ सेकंड्स में हमें कोई भी किसी भी चीज की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन सही सलाह और अपनापन जो है ना, वो हर जगह नहीं मिलता।
1: हाँ,
0: और ये हमें मिलता है केवल और केवल अपने परिवार और बुजुर्गों से। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई परेशानी हो, अपने बड़ों से जरूर बात करें।
1: हाँ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में एक छांव की तरह होता है, जो हमें कठिन समय में सहारा देती है। उनका अनुभव हमारे लिए एक मार्गदर्शन की तरह होता है, जो सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करता है।
0: बिल्कुल, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने बड़ों के साथ बैठकर बात करने का समय भी नहीं निकाल पाते ना। कुछ
1: हम सब मोबाइल में लगे हुए रहते हैं।
0: बस घर में जितने मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बच्चे बड़ों से बात नहीं करते, इवन बड़े भी बच्चों से बात नहीं करते हैं।
1: हाँ, वो तो है,
0: बस सब अपने अपने मोबाइल में
1: लगे रहते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, अगर हम कुछ समय उनके साथ बिताएं, उनसे बात करें, उनके अनुभवों से सीखें, तो हमें जीवन में कई इम्पोर्टेंट सबक मिल जाते हैं।
1: और मुनमुन, इसीलिए दोस्तों, अगली बार कोई भी परेशानी आए, आप किसी दुविधा में फंस जाएं, तो अकेले चिंता करने की बजाय अपने घर में किसी बड़े सदस्य से बात करें। हो सकता है उनकी एक छोटी सी सलाह आपकी बड़ी उलझन को आसान कर दे।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो अगली बार जब भी कोई परेशानी हो तो अकेले उस परेशानी से नहीं जूझे, अपने माता पिता से या आप जिसे भी मानते हैं उससे अपनी परेशानी जरूर साझा करें। चाहिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उन्नीस सौ 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी अपनी खुशी,
1: और मैं हूँ खुशी के साथ मुनमुन।

0: दोस्तों, आज मेरी प्रेरणा सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिनके विचार आज भी पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की।
1: जी हाँ दोस्तों, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम बताया।
0: उनके द्वारा रचित योग सूत्र आज भी योग के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माने जाते हैं।
1: बिल्कुल खुशी, और जो उनका योग सूत्र है ना, उसमें उन्होंने बताया है कि मन को शांत और एकाग्र बनाकर जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने योग के 8 अंगों का भी वर्णन किया है जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। और खुशी, उन अष्टांग योग में ना, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।
0: अरे वाह, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम बात है, लेकिन ऐसे समय में महर्षि पतंजलि के विचार हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने मन और शरीर का संतुलन बनाए रखें तो जीवन की कठिनाइयां को सामना करने का बेहतर तरीके से हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और महर्षि पतंजलि के जीवन की सबसे बड़ी जो प्रेरणा हम उनके जीवन से ले सकते हैं कि उन्होंने आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास पर जोर दिया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति नियमित प्रयास और धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
0: और महर्षि पतंजलि का जीवन हमें यह भी सीख देता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि एक बेहतर और पॉजिटिव जीवन जी सकते हैं।
1: इसलिए दोस्तों, योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। तो आइए ऐसे ही एक हमारे दोस्त को सुनते हैं जिन्होंने योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया। आइए जानते हैं उनके अनुभव और सुनते हैं आशी गौतम को, और इनसे बातचीत कर रही हैं खुशी चौधरी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी अपनी खुशी। दोस्तों, आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं लेकिन खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। देर रात तक मोबाइल चलाना, पढ़ाई या नौकरी का तनाव, नींद पूरी न होना, ये सब धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ शरीर को फिट रखती है बल्कि मन को भी शांत रखती है, और वो है योग। और आज हमारे साथ मौजूद है आशी, जो कि पिछले कई सालों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर योग ने उनके जीवन में क्या बदलाव लाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशी हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच खुशी।
2: सबसे पहले मैं आशी यही जानना चाहूंगी कि योग आपकी जीवन में कैसे आया? क्या आप बचपन से ही योग करती थी या अभी कुछ साल पहले स्टार्ट किया है?
3: नहीं खुशी जी, बचपन से तो बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं तो पहले मैं भी उन लोगों में से ही थी जो सोचते थे कि योग सिर्फ एक ओल्ड एज वाले ही कर सकते हैं। मुझे लगता था कि अगर फिट रहना है तो जिम जाओ, दौड़ लगाओ, खेलो योग, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन करीब 4 साल पहले मेरी लाइफ थोड़ी ऐसी बिजी हो गई थी कि मैं पढ़ाई, करियर की चिंता, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब फोन ही फोन यूज करती थी, सब कुछ एक साथ चल रहा था मेरे लाइफ में। नींद समय पर नहीं आती थी, फोन यूज करती थी तो सुबह उठने का मन नहीं करता था, दिन भर थकान रहती थी जबकि कोई भारी काम भी नहीं करती थी। तब मेरी एक दीदी है, उन्होंने मेरे से बोला कि चलो जिम चलते हैं, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे काफी जिद किया कि चल, तो मैंने उनको जिम के लिए मना कर दिया था। फिर हम दोनों ने सोचा मिलकर कि हम जिम नहीं जाते हैं, हम कहीं गार्डन जाते हैं जहाँ पर अपन

0: योगा वगैरह करेंगे। तो शुरू शुरू में जब हम गए हम सोचते थे कहाँ आ गए यार, लेकिन धीरे धीरे जब हम रोज जाने लगे तो मतलब अंदर से हमारे हमको खुद को अपने शरीर में परिवर्तन लगा।
1: आपने बदलाव महसूस किया?
0: हाँ, हमने बदलाव महसूस, और वहीं से सफर हमारा शुरू हो गया।
1: बिल्कुल सही कहा आशिया आपने। और जब आपने शुरुआत की तो क्या कोई कठिनाई भी आई? क्योंकि कई बार होता है कि लोग दो चार दिन जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल आई, पहले तो सुबह सुबह उठना

0: कठिनाई भी आई, क्योंकि कई बार होता है कि लोग दो चार दिन जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आई। पहले तो सुबह सुबह उठना एक चुनौती का सामना करना होता है। अलार्म बजता था और मैं सोचती थी कि आज नहीं कल से स्टार्ट करते हैं। शायद पर नया काम शुरू करते समय ऐसा ही होता है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: दूसरी बात यह है कि शुरुआत में रिजल्ट दिखाई नहीं देता। अपन सोचते हैं ना कि हाँ जा रहे तो हाथों हाथ अपन को रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन योग ऐसा नहीं है। योग धीरे धीरे काम करता है। पहले आपको महसूस नहीं होगा, मतलब समझ ही नहीं पाओगे कि आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
0: शुरुआत में बदलाव महसूस नहीं होते।
1: फिर धीरे धीरे अपन को पता लगता है कि अपन के शरीर में कुछ बदल रहा है। अचानक धीरे धीरे एहसास होता है, मतलब कि अब पहले जितना अपन गुस्सा नहीं करते हैं, तनाव महसूस नहीं होता है, शरीर में फुर्ती रहती है, शरीर हल्का महसूस होता है। यही चीजें मुझे लगातार योगा से जोड़े रखा है।
0: आशी, आपने कहा कि बदलाव महसूस होने लगे थे, ऐसा कौन सा बदलाव था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया?
1: अगर एक चीज चुननी हो तो मैं कहूंगी कि दिमाग की शांति। पहली छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था, तनाव महसूस करती थी, कोई काम समय पर नहीं होता तो बेचैनी होने लगती थी। लेकिन जब से मैंने योग शुरू किया उसके बाद मैंने देखा है, मतलब महसूस किया है कि अब मैं चीजों को थोड़ा शांत होकर देखने लगी हूँ। प्रॉब्लम आज भी आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता हो कि दुनिया खत्म हो गई है। इसके अलावा मेरी नींद में काफी सुधार आया है। पहले देर रात तक मैं फोन चलाती रहती थी, लेकिन अब उस जैसे टाइम होता है ऑटोमेटिकली मुझे नींद आने लग जाती है। शरीर खुद ही रेस्ट मांगने लग जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सुबह उठते ही मुझे आलस बिल्कुल महसूस नहीं होता।
0: आशी, आजकल युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है तनाव और ओवरथिंकिंग। क्या योग सच में मदद करता है या फिर सिर्फ ये सब किताबों की बात है?
1: नहीं, ये ओनली किताबों की बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इसका एक एग्जांपल हूँ। देखिए, योग समस्या खत्म नहीं करता, लेकिन जो समस्याओं को जो अपन देखने का जो नजरिया है वो बदल देता है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है, अपन का समझ नहीं आता अब अपन क्या करें। लेकिन जब आप कुछ देर शांत बैठकर योगा करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आप फैसला ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि अब मुझे करना क्या है। आज भी अगर ज्यादा तनाव होता है तो मैं 10 मिनट मेडिटेशन कर लेती हूँ, फर्क महसूस होता है।
0: आशी, अगर कोई युवा आज से योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार इंटरनेट पर इतने सारे आसन देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि शुरुआत थोड़ी हमेशा धीमी रखनी चाहिए। पहले थोड़ा बैठना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। फिर हमें बस आप 15-20 मिनट निकालिए, और कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आप इजी तरीके से कर सकते हैं तो पहले आप वो ट्राई करें। फिर धीरे धीरे शरीर खुद अपने आप रेडी हो जाता है कि हाँ हमें ये डेली करना है। सबसे जरूरी बात है कि योग एक कॉम्पिटिशन नहीं है। इसको एक कॉम्पिटिशन बनाना भी नहीं चाहिए। जैसे अपन सोचते हैं वो ये योगा कर रहा है तो अपन को भी यही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: सबका स्टेमिना अलग अलग होता है,
1: तो किसी और के जैसे बनने की तो हमें कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। अपने जो शरीर की जो कैपेसिटी है हमें उस अकॉर्डिंग ही करना चाहिए।
0: आप आशी युवाओं के बीच रहती हैं, आपको क्या लगता है कि आज की पीढ़ी को योग की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है?
1: सुबह उठते ही फोन चलाना, रात को सोने से पहले फोन चलाना, हर समय नोटिफिकेशन आना और कॉम्पिटिशन का दबाव रहता है, ऐसे में हम अपने मन को शांत रखने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत होती ही है। मेरे हिसाब से योग ही एक ऐसा है जो शरीर को फिट नहीं रखता, बल्कि खुद को भी अपने शरीर से जोड़े रखता है। दिन में 20 मिनट अगर हम खुद को दे दें तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता
0: है। बहुत खूबसूरत बात। और अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहें?
1: मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में करियर, सफलता, पैसा ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो ये सब क्या है, जीरो है आपके लिए। इसलिए दिन में 24 घंटों में से कम आप अगर आपके लिए 20 से 30 मिनट भी अपने लिए जरूर निकाल सकते। योग को मजबूरी नहीं, अपनी आदत बनाओ। और याद रखिए, फिट रहने का मतलब

0: सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता है, बल्कि अच्छा महसूस करना भी होता है।
1: सच में आपकी बात सुनकर ऐसा लगा कि योग कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का नाम है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सहज और अपनेपन से अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच खुशी।
2: दोस्तों भी आपने सुना, हमारी एक युवा दोस्त आशी को, जिन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपनाया और नियमित रूप से वो योग करती हैं, और इनसे बातचीत कर रही थी खुशी चौधरी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।
1: दोस्तों, विज्ञान और तकनीक की दुनिया हर दिन नए नए आविष्कारों के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं नवाचारों में एक नाम है फ्लेक्सी फ्यूल, जिसकी चर्चा आजकल काफी हो रही है। आइए दोस्तों इसे आसान भाषा में समझते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया के अधिकांश वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, लेकिन इनके लगातार उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है और प्राकृतिक संसाधन भी तेजी से कम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में खुशी वैज्ञानिकों ने मतलब ऐसे ईंधन की वो तलाश कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो, और इसी सोच से फ्लेक्सी फ्यूल की अवधारणा सामने आई है।
1: और फ्लेक्सी फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसमें पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है, और एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है।
0: और फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं।
1: और बात करें इसके फायदों की, तो फ्लेक्सी फ्यूल के उपयोग से पेट्रोल की खपत कम होती है, जिससे विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता घट जाती है। जिसके अलावा एथेनॉल के यूज से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है, जिससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।
0: और जो ये फ्लेक्सी फ्यूल है, ये किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। हाँ। क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी तुमने बताया ही था, तो जिससे किसानों की उपज की मांग बढ़ती है, और यही कारण है कि भारत में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: हाँ, हालांकि फ्लेक्सी फ्यूल के उपयोग के लिए ऐसे वाहनों की आवश्यकता होती है जिसमें इंजन विशेष रूप से इसके अनुकूल बनाए गए हों। कई देशों में ऐसे वाहन पहले से उपयोग में हैं, और भारत में भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ना, इसके लिए भी हाल ही में 13 जून को केंद्र सरकार ने 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
1: अरे वाह।
0: और ये जो घोषणा है, ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी साझा की। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कच्चे तेल यानी कि फॉसिल फ्यूल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है उसने काम शुरू भी कर दिया है।
1: तो अब उन्होंने तो उनका काम शुरू कर दिया, अब मुनमुन हम हमारा काम शुरू करें, हमारे श्रोताओं को गीत संगीत की तरफ लेके चलें।
0: बिल्कुल दोस्तों,
1: तो चलिए सुनते हैं एक बेहद ही प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की। और नॉलेज कॉर्नर में आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष दिन की, जो पारिवारिक जीवन में आर्थिक सहयोग और रिश्तों की मजबूती को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस, जिसे हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है।
1: दोस्तों रेमिटांस का मतलब है वह धनराशि जो लोग अपने घर परिवार की मदद के लिए किसी दूसरे शहर या देश से भेजते हैं। दुनिया भर के लाखों लोग अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा घर भेजते हैं। यही धनराशि परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल खुशी। और जब परिवार का कोई सदस्य रोजगार या बेहतर अवसरों की तलाश में दूर जाता है ना,
1: हाँ?
0: तो वो केवल अपने सपनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के लिए मेहनत करता है।
1: हाँ?
0: उसकी भेजी गई राशि से बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी होती हैं।
1: बिल्कुल। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस मनाने का उद्देश्य उन करोड़ों मेहनतकश लोगों के योगदान को सम्मान देना है जो अपने परिवारों के लिए दूर रहकर कठिन परिश्रम करते हैं। उनकी मेहनत न केवल उनके परिवारों की जिंदगी बेहतर बनाती है बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद करती है।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस अवसर पर हमें उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए दूर रहकर काम कर रहे हैं। उनका योगदान समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान नेता को जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा और आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं चित्रंजन दास की, जिन्हें पूरे देश में प्यार से देशबंधु कहा जाता है।
1: और सीआर दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वकील और सबसे सफल अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं।
0: बिल्कुल, खुशी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल,
0: वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे।
1: हाँ दोस्तों, और सी आर दास का मानना था कि देश की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर हों। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
0: और दोस्तों 16 जून 1925 को देशबंधु सी आर दास का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके संघर्ष, त्याग और राष्ट्र प्रेम को याद करने का अवसर देते हैं।
1: दोस्तों आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके बलिदान और संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली है।

0: श्रोताओं, आज हम एक और महान शख्सियत की पुण्यतिथि मना रहे हैं और वो है आचार्य प्रफुल्ल चंद रॉय।
1: दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक, देशभक्त और उद्योगपति प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें सम्मान में भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में आधुनिक विज्ञान और दवा उद्योग की नींव रखी थी।
0: जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी के खुलना जिले में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है।
1: हाँ, और उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद स्कॉलरशिप पाकर वे स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्होंने विज्ञान में DSC यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।
0: और साल 1895 और 96 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट नामक एक स्थिर रासायनिक यौगिक की खोज की। इस खोज ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान बनाई।
1: और दोस्तों, आचार्य राय का मानना था कि देश की गरीबी को केवल उद्योगों के जरिए ही दूर किया जा सकता है, और इसी सोच के साथ उन्होंने साल 1901 में अपने घर से बेहद कम संसाधनों के साथ शुरुआत की और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। ये भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी।
0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के शानदार सफर को यहीं ब्रेक लगाने का, पर याद रखना, जिंदगी की इस भाग दौड़ में अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना, सेहत का ध्यान रखना और मुस्कुराते रहना। आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए दीजिए अनुमति आपकी दोनों रेडियो दोस्त मुनमुन और
1: खुशी को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने

सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुना रहे हैं देवदास फिल्म से उदित नारायण, विनोद राठौर, श्रेया घोषाल की आवाजों में नुसरत बद्र का गीत और जिसे संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने। आइए सुनते हैं यही गीत।

आइए श्रोता आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 17 जून को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीकें और भ्रांतियां। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर सत्येंद्र अग्रवाल से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 17 जून को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर है 0744-294-1142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, हम आपको सुना रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको डिटेक्टिव नानी फिल्म से रोमिला मुखर्जी का गीत, जिसे संगीत से सजाया जॉली मुखर्जी ने। आवाजों में हम देखते हैं जॉली मुखर्जी के साथ में आवाजें हैं श्रवण सुरेश, जैन खान और सिमरन सिंह की। आइए सुनते हैं मस्ती भरा ये गीत।

0: दादी नहीं, नानी बोल।
1: अरे फिर से दादी, नानी बोल।
2: अरे दादी क्यों बोलते रे, नानी।

आई श्रोता, आपको एक और कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। वन संरक्षण कार्यक्रम में शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा मानव वन्यजीव संघर्ष, समस्या और समाधान। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे टेलीफोन करके सीधे विशेषज्ञ श्री अनुराग कुमार भटनागर और श्रीमती प्रेम कंवर से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-294-1142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। लीजिए, इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल्ली 6 से। मोहित चौहान की आवाज में प्रसून जोशी का गीत और ए आर रहमान का संगीत। लीजिए सुनते हैं खूबसूरत गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत दिल्ली हाइट से, रबी शेरगिल की आवाज में ये गीत। नसर कर रहे हैं आपको, इन्हीं का गीत है और इन्हीं का संगीत।

इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.03.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:27 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जयपुर अजमेर से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए। इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 की देशव्यापी तैयारियों के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ संभावित अल नीनो स्थिति पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कम बारिश की आशंका है उनकी पहचान कर पहले से फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाए, जिससे किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कृषि मंत्री ने फसल वार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचे। श्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन में भारत 13वीं बार भागीदारी कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के विकासशील देशों का पक्ष और चिंताएं मजबूती से रखेंगे। श्री मोदी एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेंगे। सत्र का विषय नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना है। सत्र में G7 देशों, भागीदारी देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए बीते 24 घंटों में 10,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रदेश में भी नीट यूजी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है। PIB ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए

0: जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में ई श्रम पोर्टल के लिए श्रमिकों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 72,00,000 से ज्यादा पुरुष श्रमिक हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी प्रदेश में करीब 53.5% है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता दर्शाती है। पंजीकृत श्रमिक केवल एक क्लिक पर अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकते हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ने वाला एकीकृत मंच है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच आज जयपुर में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले है, मंदिर है, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। बारा जिले के छबड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के गुना के निवासी थे और छबड़ा के गुगोर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर बालोतरा में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पाटोदी गांव के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर भिवाड़ी में एक औद्योगिक इकाई के निर्माणाधीन हौद की दीवार ढहने से 3 बालकों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर हुआ, जिसमें कल एक बालक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य बालकों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज कोटा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने एनडीए सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे बदलते भारत की तस्वीर बताया।
2: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने, यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: प्रेस वार्ता में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर मौजूद रहे। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने काजरी सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सूर्या ने कहा कि आज के दौर में सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है और प्रौद्योगिकी के इस समय में गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी पूरी दुनिया के घटनाक्रम की जानकारी रखता है। मीडिया से बातचीत में श्री सूर्या ने कहा कि केंद्र

0: सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कल 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामना संदेश में उन्हें आत्म गौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बताया है। प्रताप जयंती के अवसर पर सलूम्बर जिले के चावंड स्थित प्रताप स्मारक पर कल विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उधर पाली के धानमंडी में कल होने वाले जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महाराणा की राज तिलक स्थली गोगुंदा में भी विशेष आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोगुंदा पहुंचे हैं। वहीं राजसमंद की मचींद गांव स्थित राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित 2 दिन का मेला आज संपन्न हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में नियमित और सुचारू जलापूर्ति के लिए आज 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से ये नलकूप गजरूप सागर स्थित परिसर में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82 लाख से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में इन दिनों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का क्रम भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चौहार दीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला पशु बीमा, फसल बीमा पॉलिसी जारी करने, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न काम एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। जिले में 19वें रोजगार मेले का आयोजन अजमेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के एसटीआई ऑडिटोरियम में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

0: पत्र प्रदान किए गए। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कैरर फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून न उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजन पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल तक 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई किया। 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में भी न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जारा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ए दौरान कृषि मंत्री कम बिरखा री शंका वाला जिला री ओळखाण कर फसलवार तैयारी करण सारू कहो। वे फसलवार लक्ष्य बुआई री प्रगति और राज्यवार तैयारियां रो जायजो लीनो। मंत्री कपास री उपज बधावण और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन रा बारा माए चर्चा कीनी। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नियम जारी करी जिया आधार कार्ड रो बेजा इस्तेमाल नागरिकता रहवास रा पता रा सबूत रा तौर करण रा आरोप वाली एक अर्जी माथे सुनवाई करता थका आज केंद्र और राज्यों जवाब तलब कीनो। अर्जी माए आधार नंबर ने केवल पहचान सत्यापन रा कागज रा तौर ही काम लेवन रो हुकम देवन री अर्ज करी ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल भेवन सारू फ्रांस रा एवियो पूग किया है। श्री मोदी लगातार 7वीं दफा G7 सम्मेलन में भाग ले रहा है जबकि भारत इन माए 13वीं दफा शिरकत कर रियो है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों रो पक्ष और चिंतावां री बात रखेला। श्री मोदी नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनः स्थापित करना मुद्दा वाला कार्य सत्र में शामिल भेला। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों रा नेता विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक रा नुमाइंदा शामिल भेला। श्री मोदी कनाडा रा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह

0: ਜਾਨ ਸਾਗਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਲਾ। 21 ਜੂਨ ਨ ਉਜੂ ਵੇਵਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ UG ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਸਾਰੂ ਲਾਰਲਾ 24 ਘੰਟਾ ਮਾਏ 10 ਲੱਖ ਬੱਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਏਜੰਸੀ NTA ਰ ਮੁਜਬ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਮਾਏ ਸਾਫ ਕੋਈ ਬਧਵਣ ਅਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਾਰੂ ਸਰਕਾਰ 22 ਜੂਨ ਤਾਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਮਾਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀਨੀ ਹੈ। NTA ਰ ਮੁਜਬ ਆ ਰੋਕ ਨੀਟ ਰੀ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਰਾ ਦਿਨ ਵਾਰਾ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਤਾਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਵੇਲਾ। NTA ਰ ਮੁਜਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨ 30 ਜੂਨ ਤਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਰੋ ਸੁਬਿਤੋ ਬਹਾਲ ਨੀ ਕਰਨ ਸਾਰੂ ਕਹੀ ਚਿਓ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾ ਆਈ ਨੀਟ UG ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਕਰਾਵਣ ਸਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਾਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਗੇ ਪੁਗਾਵਣ ਅਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰੂ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ E20 ਈਂਧਨ ਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਾਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਰੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਿਨੋ ਹੈ ਕਿ E20 ਈਂਧਨ ਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਾਡੀਆਂ ਰੀ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 बत्ता मजूर नाम मंडा लीना है। आम आए 82,00,000 बत्ते महिलावां और 72,00,000 बत्ता पुरुष मजूर शामिल है। राज्य री श्रम शक्ति माए महिलावां री तादाद करीब 53.5% है, जो माली और सामाजिक हलका माए महिलावां री बढ़ती भागीदारी बतावे है। ई श्रम पोर्टल माथे नाम मंडायोड़ा मजूर एक क्लिक कर और कई सामाजिक सुरक्षा योजनावां जुड़ सके है। वो पोर्टल मजूरा ने पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और रहवास समेत न्यारा न्यारा सुविधाओं जोड़े है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 सारू रीको और लघु उद्योग भारती विच आज जयपुर माय करार माथे सही करी ची। ई मौके उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि राज्य माय भाटा और शिल्परी कोई कमी नहीं है, पर इन्हें ओलखाण देवन री जरूरत है। वे कहो कि स्टोन मार्ट भाटा रा कारोबार सारू दुनिया रा खास मंच रा तौर सामी आयो है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का वाथल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, डॉलवर्क स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
0: राज्य माए लारला 24 घंटा माए फिया न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत वेकी। 12 जिला रा छबड़ा हलका माए पार्वती नदी माए डूब जावणु 4 जना री मौत वेकी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुनारा रहवासी हा और छबड़ा कने गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल वेवण सारू आया हा। बालोतरा जिला माए पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस और कार री टक्कर रे कारण 4 जना री मौत वेकी। मरण वाला 4 ही जना कार माए सवार हा, जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे माथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर उ टकरा जावण रे कारण 2 जना री मौके ही मौत वेगी, जदके एक महिला घनी जख्मी वेगी, जिनने पाली रा बांगड़ अस्पताल माए भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भीत ढस जावणु 3 बच्चा री मौत वेगी और 3 बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री काल ही मौत वेगी ही, जदके 2 बालक आज दम तोड़ती नो। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही।

0: ਕੀ ਹੈ। ਵੇ ਅੱਜ ਕੋਟਾ ਮਾਏ ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਸਲ ਕੇਂਦਰ ਮਾਏ ਐਨਡੀਏ ਰਾ ਰਾਜ ਰਾ 12 ਸਾਲ ਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਥਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਤਾ ਭਾਰਤ ਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਤਾਇਓ।
1: मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। सातों दिन और 365 12 महीने यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मंत्री मदन दिलावर और हीरा लाल नागरी पत्रकार वार्ता रे दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ही आज जोधपुर पुग्या। वे प्रबुद्ध जन सम्मेलन माई कहो के मौजूदा दौर माई जानकारियां तेजी पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर माए गांव ढाणी माए बैठा लोग आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कां सूर्या कहो के केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा जतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ए मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश माए कहो के महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता थका मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो के मायड़ भूमि री हिफाजत सारू वारी लड़ाई हमेशा याद राखी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ई प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर कर देवन वाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलुम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर माए काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनु पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माए आज खास आयोजन राख्यो जा रियो है। इन माए शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ए गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल मा थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो दो दिन रो मेलो आज पूरो फेक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य माए आवता 4-5 दिन ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है। इनु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। ए बीच आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौदी माई 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन सागे अंधड़ चालन री संभावना है। गैर कमांड हल्का रा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज धरनो दे रिया है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन ने जाम कर दीनी। इनु अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू माए है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला री पिछाण कर और फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पना 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश माए फिर न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो

0: चौपाल कार्यक्रम सुनबाला संदा कास्तकार भाई बना को चौपाल कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत छे। साथ ही साथ राजू भाई गाड़ी सु घणी घणी राम राम भाई बनाओ। मने उम्मीद ही न पूरा विश्वास छे कि आप सब आनंद में होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा और आनंद में रहनी भी चाहिए। क्यों कह भाई बनाओ, आपने जाना जा कि मस्ती और आनंद कोई दुकान पर न मिले, यह भी एक कला छे। बहुत सारा पैसा हो लेकिन इसके बावजूद भी वो टेंशन में जिए छे, लेकिन मस्त रहो भी एक कला छे। यही लेख मस्त रहनी चाहिए, आनंद लेनी चाहिए जीवन को, क्योंकि जो जीवन बार बार न मिले। दूसरी चीज एक बात और छे कि मस्त और आनंद आपन कब ले सके जा, मस्ती कब ले सके जा, आनंद कब ले सके जा, जब आपन स्वस्थ होऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि अपन ने स्वस्थ रहनी चाहिए, लेकिन आप स्वस्थ रहबा के लेकर अपन ने काई करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन ने संतुलित आहार यानी कि खावा पीवा को विशेष ध्यान रखनी चाहिए, है ना। अब आज यहाँ गर्मी छे तो हल्को भोजन करा, नहीं पानी की अपने पास पूरी पूरी व्यवस्था रखा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो अपन बाहर न खड़ा, है ना, कोई विशेष काम हो तो बाहर जावा, न समझे आप मारी बात। तो खबा को अपना शरीर को अपन ने ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज अगर बात करूं मैं आपको बताएं योगा की, क्योंकि आज के देखो आपने बात करा लगभग 25-30 साल पहले तो पारंपरिक खेती करे चा लोग। दूसरी चीज या ची बहुत मेहनत करे चा, हल कुड़ी सु खेती करे चा, परिश्रम भी खूब हो चो, पसीनो भी खूब कड़ो चो, तो वहां की बढ़िया व्यायाम हो जाओ चो, है ना, वहां के तहें कोई व्यायाम करवा की। लेकिन आज की जो जिंदगी छे वह बड़ी यूं कहते ना बहुत अंग्रेजी को एक शब्द छे लग्जरी, वह होगी बहुत अच्छी होगी का मतलब कोई काम करवा की जरूरत ही कौन है, सब मशीनरी युग हो गयो। ऐसी स्थिति में आपनों जो शरीर की जो गतिविधि छे वह कम हो ज्यादा न हो पाओ, ऐसी स्थिति में अपन ने योगा करनी चाहिए। भाई बनाओ बड़ा बड़ा धर्म गुरु भी कहे, योग शास्त्री भी कहे और योग गुरु भी कहे, तड़ तड़ कही आप सबसे पहले तो बेगा उठवा की कोशिश करो। सूर्योदय से पहले उठो और सूर्योदय के पहले घूमर घर न पाछा आओ और कम से कम या मानर चलो 300 और 8 किलोमीटर का बीच में, चाहे वो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, रोजीना आपने घूमनी चाहिए। अगर आप दौड़ लगावा में सक्षम छो 2 किलोमीटर तो दौड़ भी लगानी चाहिए। आपने सु शरीर सु पसीनो खड़नी चाहिए, वो पसीनो खड़ोगो तो या मानर चलो का आप स्वस्थ छो। और घंटा आध घंटा योगा भी करो, कई सारा आसन रहे से जे आपने योगा करनी चाहिए तो आपनो शरीर स्वस्थ रहोगो, स्वस्थ रहोगो और पुष्ट रहोगो और तभी आपन बढ़िया आनंद ले पाऊंगा जीवन को और बढ़िया मस्त रह पाऊंगा। भाई बनो बात बहुत सारी छे और बहुत सारी करांगा, पण आपन सबसे पहले आज एक जानकारी ले रहे छा कि खेती के ताई लाभकारी कशा बनानी चाहिए और खेती में नवाचार कशा करनी चाहिए। इन बारे में विस्तार से अपना जानकारी देगा ब्रजेश कुमार चंदेल जी और यहाँ से बात करेगी आपने श्यामा बना, तो अपन सुनना चाह यह जानकारी।
1: क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीका, उन्नत बीज, वैज्ञानिक विधियां और नवीन कृषि उपकरण को उपयोग हो रहा है। ऐसा किसान जे नवीन तकनीका न अपना उत्पादन और आमदनी में वृद्धि करे छे और किसान का लेखा प्रेरणा स्रोत बने छे। मन प्रापण खाचा प्रगतिशील कृषक, ऐसा ही एक प्रगतिशील कृषक आज अपने स्टूडियो में अपने लाना मौजूद छे। आप छे श्री ब्रजेश कुमार चंदेल जी, गांव कलोनी, तहसील शाहबाद, जिला बारा का रहने वाला। आपने कई नवाचार करया छे

0: और या नवाचारा की वजह से आज आपकी एक अलग पहचान बनी जाए। श्री ब्रजेश जी, आपको घनो घनो स्वागत स्टूडियो में। राम राम।
1: राम राम, बहुत बहुत आभार आपका।
0: अच्छा ब्रजेश जी, कितना साल हो गया जी भाई खेती करता हुआ?
1: मैं पिछले 10 वर्ष से ज्यादा समय से मतलब खेती कर रहा हूँ।
0: अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी करी?
1: मैंने एमए तक।
0: एमए कर रखे हो जी, तो मतलब पढ़ाई तो लगभग लगभग आपकी उच्च स्तर की ही है
1: जी।
0: तो फिर उका बाद में खेती में आ बगो कसा विचार बने?
1: मैम, ये इसकी शुरुआत में अगर कहूँ 2016 से हुई थी। इससे पहले ही मैंने खेती में हाथ आजमाए थे, लेकिन 2014 से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कोटा में स्टडी कर रहा था। इसी दौरान दादाजी के कहने पर उनकी इच्छा थी कि मतलब उनकी मौजूदगी में कोई उनकी विरासत को संभाले, तो उनकी इच्छा के अनुरूप मैंने 2016 में मतलब कोटा छोड़ दिया। और इसके पश्चात मैंने 2016 से लगातार मैंने खेती को संभाला और उनकी उस टाइम पारंपरिक खेती करते थे, पारंपरिक खेती को मैंने भी अपनाया। फिर समय के साथ साथ मुझे लगा कि भाई ये इस तरीके से हमारी आय में वृद्धि नहीं हो पाएगी और इससे ना कुछ बदलाव होने वाला, तो हमने फिर विभाग जो है, कृषि विभाग है और उद्यान विभाग है, इनके सुपरवाइजर हैं या जो उच्च अधिकारी जो भी है 12 के, उनके माध्यम से ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से मैंने उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। इसके पश्चात मेरा रुझान बढ़ता गया निरंतर और उनके सहयोग उनका मिलता रहा मुझे, तो मैंने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेता रहा मैं, साथ में इसमें अंदर और आधुनिक नवाचार के लिए मैं प्रयास।
0: तो अच्छा, कितनी जमीन पर खेती करो जो
1: अभी? मैम, मैं पिछले 10 वर्ष से लगभग मेरा जो रकबा है वो पहले कम था, इस बार अभी मेरा 100 बीघे समथिंग मेरा रकबा है।
0: तो खेती में का केवल खेती मतलब फसल ही ले जो या बागवानी भी छे, पशुपालन भी छे, काई काई करो जो?
1: अभी मैं आपको बताऊं, मैं पारंपरिक खेती भी करता हूं, उसके साथ साथ मैं बागवानी भी करता हूं।
0: अच्छा,
1: बागवानी में मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 5-6 वर्ष पूर्व नींबू का बगीचा लगाया था 1 एकड़ में, जो कि उद्यान विभाग की सब्सिडी के माध्यम से था। इसके साथ में ही मेरा अंजीर का बगीचा है 1 एकड़ में, जो लगभग 2 वर्ष पुराना है। और अभी 1 एकड़ मेरा पिछले साल मैंने पपीता लगाया था 2025 में, 25 में प्लांटिंग के बाद मेरा अभी अच्छा बगीचा चल रहा है। और इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 वेराइटी चुनाव किया है, जिसमें रेलेडी 786 भी है जिसको ताइवानी, और एक रेड बेबी है और एक अमीना है जो बीएनआर का है। और इसके साथ में मैं अभी सब्जियों की खेती भी करता हूँ, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, और टमाटर मिर्ची के साथ साथ मैं पशुपालन भी करता हूँ। पशुपालन मेरे पास अभी कुछ गाय भैंसे भी हैं और मैं उनमें भी लगातार मेरा विचार है कि मैं उनमें सरकार के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से मैं डेयरी फार्मिंग की ओर मेरा रुझान है। साथ में ही उसके जुड़े हुए जो है, मैं कहूँ अगर उसको वर्मी कम्पोस्ट जो पशुओं पर आश्रित है, पशु पर आधारित है, मेरा उसकी यूनिट खोलने का ही विचार है। मैं साथ में लहसुन प्याज की भी खेती करता हूँ, मेरे पास प्याज भंडारण बना हुआ है सरकारी सब्सिडी के माध्यम से। और मैं मत्स्य पालन की और भी प्रयास है मेरे।
0: मतलब आप एक ही चीज पर निर्भर नहीं रह रहे, मिश्रित खेती कर रहे हैं, जो कई चीजें एक साथ।
1: मैं चाहता हूँ मैम कि मेरा किसी एक चीज पर निर्भरता ना रहे और आय के मेरे सोर्सेज बराबर सभी मतलब विस्तृत रहे।
0: बिल्कुल।
1: ताकि खेती में बहुत सारे, आप जानते हो, पारंपरिक खेती करता किसान प्रकृति की मार भी झेलता है।
0: बिल्कुल, नुकसान भी हो तो फायदा भी हो।
1: कई बार मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मैम, वहाँ राजस्थान का होने को तो वैसे सबसे उत्तम क्षेत्र है वो हाड़ौती का, वार्षिक जो वर्षा है उसका स्तर भी अच्छा है, जंगल का जो क्षेत्र भी अच्छा है मैम, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब जो विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियां हैं, तो हमारे जस्ट नीचे मतलब हम 250-300 फीट ऊपर मतलब रहते हैं, जस्ट नीचे मतलब सावात की घाटी बोलते हैं, उसके नीचे मतलब निचला धरातल जो है, हम मतलब उस ऊंचाई पे हैं, तो भूमि के जलस्तर की समस्या हमें लगातार देखने को मिलती है। बरसात अच्छी होती है मैम तो मतलब हमारे नलकूप अच्छा पानी देते हैं, बरसात अगर इस बार कमजोर बता रहे हैं, कई बार ऐसे कमजोर होती है तो मैम हमें दिक्कत आती है।
0: अच्छा, आपने अबार खेती में नवाचार की बात कही और नई नई चीजें, इतनी सारी चीजें आप लेकर के चल रहे, तो खेती बाड़ी में आपका घर का ही लागे हुआ या दूसरा के लिए भी रोजगार दे रखे हो?
1: मैम, मेरे पास पिछले 4-5 वर्षों से मैंने मतलब मैं रोजगार दे रहा हूँ। अभी मेरे पास वर्तमान में 5-6 लोग हैं जो लगातार रोजगार उनको नियमित मिलता है, तो लगभग मान लो जी कि मतलब कम से कम 20-25 लोगों को मतलब रोजगार मेरे पास नियमित मिल जाता है। 5 लोग तो मेरे पास नियमित हैं, अभी 12 महीने रहते हैं वो। अनुभव किया कि भाई ये सब शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, पूरा जो मेहनत का है, सफलता के लिए मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। तो आजकल मोबाइल आप जानते हो, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हमारा जो डाटा उसका इस्तेमाल अच्छा होता है और YouTube के माध्यम से हम बहुत सारे अच्छे नई नई तकनीक की जानकारी, कृषि में नवाचार जो पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर या इंडिया लेवल पे या इंडिया से बाहर भी मतलब हमें नई चीज सुनने और देखने को मिलती, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, मतलब मैं पिछले 5-6 वर्षों से और ज्यादा समय से मतलब लगातार देख रहा हूँ, पशुपालन पे हो, चाहे पोल्ट्री पे हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट पे हो, चाहे डेयरी फार्मिंग पे हो, चाहे बागवानी में हो, बागवानी में क्षेत्र विशेष

0: हिसाब से अलग अलग प्लांटिंग होती है, जैसे बालसुंदरी बेर है, कटहल है। मैंने अभी कटहल के प्लांट मैंने कुछ ट्रायल बेसिस पे लगाए हुए हैं। वो मैंने पौधे मैम एक कटहल जो पका हुआ कटहल जो हाट वाले बाजार वाले जो उसको फेंक देते हैं, मैंने वहाँ से सीड निकाल के उनको मैंने प्लांट किया। प्लांट के बाद मैंने उनको आज मतलब मेरे पास फल दे रहे हैं वो पौधे, और उनसे अच्छे फल मिल रहे हैं मेरे को। तो कहीं ना कहीं मतलब इसकी शुरुआत एक छोटे स्तर से हुई थी। पहले कुछ पौधे मैंने तैयार किए, फिर रुझान बढ़ा मेरा, फिर मैंने इस तरह से बहुत सारे पौधे मैंने खुद तैयार किए। फिर वैरायटी का चुनाव के लिए लेकर के फिर मेरे को प्रॉपर सीड नहीं मिल पा रहे थे, ऐसे में फिर मैंने नीमच से मैंने पपीते के पौधे मैंने मंगाए। पिछले बगीचे में जो कमियां रहीं वो आने वाले बगीचे में नहीं रहे, आने वाले बगीचे में जो कमियां रहेंगी वो उससे आगे वाले। मैं इस चीज़ को मतलब इस पर मैं कमांड हासिल करना चाहता हूँ, लगातार सीखना चाहता हूँ मैम। क्योंकि एक तो क्या है, एक तो क्षेत्र मैं आपको बताऊँ, हमारा जो क्षेत्र है पूरे राजस्थान का वो गर्म क्षेत्र है। पपीते का जो अगर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करूँ तो महाराष्ट्र से मैम अच्छा आता है, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो पपीता रहता है उसकी डिमांड मार्केट में भी अच्छी रहती है। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, मतलब बैलेंस रहता है, ना तो ज्यादा अधिक जाता ना ज्यादा कम रहता। ऐसी वैरायटी मतलब जो हमारे क्षेत्र के अनुकूल हो उस पर मैं आगे काम करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, नींबू और अंजीर पर भी आप काम कर रहे हैं
0: जी मैम? मैम नींबू का मेरा पिछले 5-6 वर्षों से मैंने उसकी प्लांटिंग की है। उसके लगभग मैंने प्लांटिंग तो ज्यादा की थी, लगभग 500 पौधे लगाए थे, और उनमें इस बार मतलब फ्रूटिंग अच्छी फ्रूटिंग आई है, और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष मैं उससे अच्छा उत्पादन लूंगा, उससे मेरे को आय भी होगी। अंजीर अभी 2 वर्ष का है और 1 वर्ष से मेरे को फ्रूटिंग दे रहा है।
1: अच्छा, तो मतलब वो प्रयास चल रहे हैं
0: जी मैम।
1: अच्छा, जब अपन खेती की बात करना चाहे तो रासायनिक और अब तो जैविक उर्वरक और जैविक जो जो खाद जो, तो आपकी को प्रयोग करो जो रासायनिक को या जैविक को?
0: मैम इसमें मेरा सब मैम मिला जुला है एक्सपीरियंस। मैं दोनों का ही इस्तेमाल करता हूँ, रासायनिक का भी करता हूँ जैविक का भी करता हूँ। रासायनिक की बात करूँ, रासायनिक भी आप भलीभांति जानते हैं कि आजकल डीएपी है, यूरिया है, और तरह तरह की दवाइयां हैं, फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, एंटीबायोटिक है। और जैविक में मैं अगर बात करूं आपको, तो जैविक में मैं बर्मी जो हमारा लोकल का जो गायों भैंसों का जो रहता है उसका पचा हुआ पुराना खाद वो मैं खेतों में डालता हूं। मैंने इस बार भी 10-12 ट्रॉली डलवाया है। इसके साथ ही मैं जैविक में जो जीवामृत है जो गोमूत्र से है और निर्मित होता है, या फिर मैं कहूँ अगर आपको आंकड़े के पत्ते हैं, बेसरम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, और इनके सबके सम्मिश्रण से मतलब मैं एक जैविक कीटनाशक का भी मतलब इस्तेमाल करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया।
0: साथ में ही मैं इसके नीम ऑयल का उपयोग करता हूँ जो 10,000 PPM का आता है। ये इंसेक्ट के लिए और छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके बचाव के लिए अच्छा रहता है। और मेरा भी नए मेरी कोशिश है कि पशुधन के साथ साथ मतलब मैं बर्मी कंपोस्ट पे मैं मतलब प्लांट करना चाहता हूँ बड़े बड़े स्तर पर, और उसको मैं अपने खेती में इस्तेमाल करूंगा। और बहुत जल्द मतलब जो मैं भी समस्या देख रहा हूँ मैम कि हमारे पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में लगातार इनका कीटनाशकों का प्रभाव इतना बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल।
0: खेतों में इतने मतलब जहरीले कीट मतलब कीटनाशक डाले जा रहे हैं जिनसे हमारे फसल हों, चाहे अनाज हों, चाहे दालें हों, चाहे अगर देखा जाए तो दूध भी कहीं ना कहीं मतलब प्रभावित है। तो इस और मेरा प्रयास है कि मतलब मैं इन क्षेत्रों में भी मतलब मैं जैविक की तरीके से मतलब मैं इसको उत्पादित करूं।
1: अच्छा, आपने बार पशुपालन की बात की, तो कितना पशु है आपके पास?
0: मैम मेरे पास 2 भैंसे हैं, 2-3 गाय हैं, और मेरा विचार है कि मैं नए पशु मतलब ऐड करना चाहता हूँ।
1: तो अबार जितना पशु है तो वहाँ से जो दूध मिले चे तो वो तो घर में ही आप?
0: जी मैम, उसके घर की काम हो पाए।
1: हाँ बिल्कुल, घर का काम आवाज। लेकिन जो गोबर जो मिल रहे आपने बताए तो वो अपना खेता में काम आ जाओ।
0: जी मैम।
1: अच्छा, पहले जब आपने रासायनिक खेती से कर रहा होगा और अब जब आप जैविक जो खेती कर रहे थे, तो कुछ अंतर देखवा मिले होगा आपन?
0: हाँ मैम बिल्कुल, मेरे को अंतर देखने को मिलता है। जैविक का मैं अगर मैं बचपन की ओर जाऊंगा, तो बचपन में जब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, जब खरपतवार नाशी हो चाहे, तो उस वक्त हमने देखा था कि खेतों में जहां भी हम कोई भी एक पौधा उखाड़ते थे, चाहे वो फसल का हो या खरपतवार का हो, तो हमें बहुत सारे केंचुए उसको देखने को मिलते थे। आज वो केंचुए कहीं ना कहीं गायब है, हमारे खेतों में केंचुए नहीं है, और केंचुआ किसान का मित्र है, और किसान ने कहीं ना कहीं मतलब केंचुए का खेतों से गायब करके खुद का नुकसान कर रहा है। जो आज हम बात करते हैं कि मतलब नमी, खेतों में नमी कहीं ना कहीं मतलब नहीं मिल पा रही, क्योंकि खेत जो है वो ड्राई होते जा रहे हैं, इनमें डीएपी की एक लेयर जमती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं मतलब जो एक तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी खेतों से नष्ट हो रहे हैं, और दूसरा ये कि मतलब जमीन जो है वो मतलब ऊसर होती जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इस और मतलब सभी किसानों को प्रयास करने चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं पुरानी जो हमारी पद्धति थी जैविक तरीके से हमें काम करना चाहिए।
1: अच्छा, पपीता, नींबू, अंजीर, यहाँ का अलावा और कोई खेती भी और बागवानी में

0: छक आपके पास?
1: जी मैम, मैं वर्तमान में अभी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं बाल सुंदरी बेर का प्लान कर रहा हूँ 1 एकड़ में। मेरा मोरिंगो का भी, मेरा 2 एकड़ का प्लान है, साथ के साथ मेरा आंवले का ही प्लान है, और कटहल का मैं प्लान कर रहा हूँ, कटहल लगाने का।
0: मतलब भविष्य की भी पूरी तैयारी कर
1: जी
0: रखी है
1: मैम,
0: आपने, का नया
1: जी
0: नया प्रयोग करता रहना चाहिए।
1: एक्चुअली मैम क्या है कि किसान जो है अभी तक जो पारंपरिक खेती करता है उसमें अभी बुवाई करेगा, फिर इसके पश्चात 4-5 महीने बाद उसकी फसल आएगी,
0: बिल्कुल
1: फिर 5 महीने 6 महीने बाद वो पैसा देखेगा,
0: बिल्कुल
1: ये क्रम चलता रहा है। मेरा ध्येय ये मैम कि मैं चाहता हूँ कि किसान के पास आय हमेशा रहे। एक तो क्या, सब्जियों सब्जियां जो है, सब्जियां उत्पादन करके किसान रेगुलर आय ले सकता है, उसको हर मतलब दूसरे महीने से तीसरे महीने से आय चालू हो जाएगी। हमारी जो पारंपरिक खेती है उससे हम 4-5 महीने में आय लेते रहेंगे, वो भी चलते रहना चाहिए। डेयरी फार्मिंग है, पशुधन है, उसी में मतलब रोज आय मिल सकती है।
0: बिल्कुल
1: वर्मी कंपोस्ट है, एक तो हमारे खेतों में जरूरी है, बागवानों में जरूरी है, और अगर अतिरिक्त हो तो हम इसको बेचकर भी आय ले सकते हैं। हमें दूध है जो वो नियमित मिलेगा ही सही। और मैं कहूँ अगर आपको, जो मैंने बताया आपको, चंदन है, महोगनी है, मालवाणी में, ये मैम लॉन्ग टर्म के लिए है। ये किसान इसको अगर बाउंड्री पे लगाकर प्रयास करे तो इससे अच्छी आय मतलब 10 से 15 वर्ष बाद वो ले सकते। कटहल है, कटहल आपको 4-5 वर्षों से आय दे सकती है, और बाल सुंदरी बेर है जो आपको छठे महीने से या 1 साल बाद आपको आय दे सकते। ये एक चक्र रहना चाहिए 12 महीने का कि किसान के पास हमेशा आय रहे, क्योंकि किसान हमेशा, कई बार मैं भी अभी वर्तमान में फेस कर रहा हूँ इस समस्या को कि हम 4-5 महीने बाद हमें पैसा मिलता है, पैसा हमारा पूरा अभी जीरो हो गया,
0: बिल्कुल
1: मेरा पैसा भी पूरा जीरो हो गया, अब मेरी आय मिलेगी फसल की। हम तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी आय कभी खत्म ना हो। किसान को एक शेड्यूल बनाकर चलना चाहिए ताकि मतलब उसके बाद नियमित आय रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा, आपने इतना प्रयोग करे, नई नई चीजें करी, तो आपने कोई सरकारी योजना को लाभ लियो ही मा?
1: वर्तमान में अभी कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें राज्य सरकार की भी हैं, कुछ केंद्र सरकार की भी हैं। अभी मैंने राज्य सरकार की मैम योजनाओं का मैं पिछले 4 वर्ष से मतलब नियमित लाभ ले रहा हूँ, जिसमें चाहे वो इस मतलब सिंचाई के लिए हो, चाहे वो मैं अगर कहूँ उसको फार्म पॉन्ड है, जैसे सोलर सोलर है, सोलर उद्यान विभाग की ओर से है, और कृषि विभाग की ओर से पाइपलाइन है, उस पर सब्सिडी है, तार फेंसिंग है उस पर सब्सिडी है, मैंने वो भी कराई है, तलाई बनाई है, तलाई के साथ साथ मैंने अभी उद्यान विभाग की ओर से स्प्रे मतलब ड्रिप इरिगेशन उसकी प्लांटिंग भी की है, उस पर भी मेरे को सब्सिडी मिली हुई है, और जो बगीचे मैंने लगाए हैं उस पर मेरे को विभाग उद्यान विभाग की ओर से सब्सिडी मिली हुई है। और साथ में ही मैं अभी मेरा नया प्लान जो चल रहा है उद्यान विभाग की ओर से, मुझे अभी प्याज भंडारण मेरा बना हुआ है, उस पर भी मेरे को सब्सिडी मिली हुई है। और मेरी कोशिश मैम ये है कि मैं लगभग लगभग ऐसी कोई कृषि यंत्र में अभी सब्सिडी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और उद्यान विभाग की ओर से बड़ी तलाई का मेरा अभी प्लान है, और मैं उस ओर मैंने आवेदन किया है, 3 बीघे का है वो,
0: बिल्कुल
1: उस पर अच्छी सब्सिडी है, और नई जो बगीचे में लगाना चाहता हूँ उस पर भी सब्सिडी मेरा प्लान है मैम। ये क्रम मेरा, और केंद्र सरकार की ओर से मत्स्य पालन के लिए मेरा प्रयास है, मत्स्य संपदा जो हमारा केंद्र सरकार का जो विजन है उसके लिए मेरा आवेदन किया हुआ है,
0: बिल्कुल
1: और 12 के जो उच्च अधिकारी है मेरा, हम लगातार वो सहयोग करते हैं। तो मेरी कोशिश मैम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मत्स्य पालन में मैं हाथ आजमाना चाहता हूँ।
0: अच्छा, आप जो इतना प्रयोग कर रहे हो और आपको ताई निरंतर आमदनी मिल रही है, तो आप मां और आपका आसपास जो किसान भाई जो पारंपरिक खेती माल भी जुड़ा हुआ है, कितना फर्क आ जाता हो वो?
1: मैम असल में क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक वो लोग होते हैं मैम जो करके देखना चाहते हैं, एक वो होते हैं देखकर करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल
1: मैं मैम खुद को उस श्रेणी में खड़ा करना चाहता हूँ कि मैं हर चीज को करके देखना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे मित्र मेरे हैं, बहुत सारे आसपास के किसान भाई हैं, और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ई पत्रिका के माध्यम से हो, चाहे पत्रिका के माध्यम से हो, बहुत सारे किसान भाई मेरे से जुड़े हैं, पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं, लगभग 200-500 किसान मेरे जुड़े हुए हैं, और मैं हमेशा उनसे सीखता रहता हूँ, वो भी मतलब प्रयास करते हैं मेरे से जुड़ने का। और अभी मैं आपको वर्तमान में बताऊं कि बहुत सारे मित्र जो हैं सब्जियों की खेती करते हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ ही मतलब वो पपीते की ओर भी जाना चाहते हैं, और अन्य क्षेत्र में अन्य बागवानी भी करना चाहते हैं, वो कटहल है, बेर है। तो मेरी कोशिश ये मैम कि मैं क्षेत्र में मतलब जब तक हम एक अच्छी आय नहीं दिखा पाएंगे, किसान किसान का क्या है मैम, वो ये देखना चाहता है कि पैसा कितना मिल रहा है।
0: बिल्कुल ब्रजेश जी, आप इतना नवाचार कर रहे हो, और आज जो युवा अपने साथ आप नहीं आया, बातचीत सुन रहे हो, आपकी जो बात सुन रहे हो, वहां के लेकर आप नया प्रयोग करवा के लेकर कई संदेश देवो चाहोगा?
1: मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि हर व्यक्ति अपने स्तर से, अपने क्षेत्र विशेष के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, पानी की निर्भरता, जमीन की गुणवत्ता, उसके हिसाब से पहले प्रयास करे, छोटे स्तर से प्रयास करे। ऐसा नहीं कि मतलब हम यूट्यूब पर कोई चीज देख लें और उसके लालच में आकर के हम

0: कोई भी शोध करें और बड़े स्तर पे उसमें इन्वेस्ट कर दें, बाद में हमें लॉस उठाना पड़े। क्योंकि मैंने भी, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सफलता ही मुझे मिली है, बहुत सारी चीज़ें मैं असफल भी रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला है और मैं आज भी सीख रहा हूँ। और पिछला मेरा 10 साल का अनुभव यही कहता है कि आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करें, छोटे स्तर से करें, उसमें पहले 1-2 वर्ष आप अपना सीखने का समय निकालें, सीखने के पश्चात जब आपको लगे कि आप अच्छे स्तर पर सीख चुके हो, फिर उसको बड़े स्तर पर ले जाएं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरे पास घर पे गोबर गैस लगा हुआ है। गोबर गैस जो मेरे घर पे जो गोबर होता है, उस गोबर का इस्तेमाल मैं गोबर गैस में करता हूँ, और उससे मेरे को मतलब खाना पकाने में वो गैस मेरा इस्तेमाल होती है। साथ में ही वो जो अपशिष्ट जो गोबर का निकलता है, उसको मैं खेतों में इस्तेमाल करता हूँ, और वो एक अच्छा, बहुत उत्तम क्वालिटी का वो खाद होता है, जिसमें किसी प्रकार का खरपतवार नहीं रहता और बहुत गुणकारी होता है प्रत्येक पौधे के लिए, प्रत्येक फसल के लिए।
1: बिल्कुल, तो मतलब नवाचार करता रहो और नई चीजें अगर आपन कर रहे हैं, कोई कठिनाई आओ जाए तो उसे घबरावा को ना और लगातार मेहनत करता रहा। श्री ब्रजेश कुमार चंदेल जी, आप स्टूडियो में आया और अपना अनुभव अपना किसान भाई आपने साझा करा, इकले का आपको घनो घनो धन्यवाद। राम राम।
2: देखो भाई बहनों, अपन जो खेती से संबंधित जो बात छी, और बढ़िया बात यह छे कि जो अनुभव छा, और देखो वो कहे ना बड़ा लोग खबी गया पहले, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अंग्रेजी में भी एक कहावत छे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य के ताई कुशल बनाओ छे। अगर आप करता रहेगा, कोशिश करेगा और प्रयास करेगा, सीखबा की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से यह मानर चलो कि सफलता अपना पास आओगी। मने याद छे एक मार ताई पंक्ति याद आओ छे कि आंसुओं के ताई पसीना में बदल दियो, मेहनत नसीब के ताई बदल छे, और या उतनी सच्चे छे जैसे कि रोज सूरज खड़े छे। इन लेख मेहनत का सामना सब फीका छे, शॉर्टकट कोई रस्तो कोई ना। अगर आपने सफल होनो छे, आपने आगे बढ़नो छे, आपने कोई नयो करनो छे, आपने कोई समाज के ताई संदेश देनो छे, तो अलग हटर करना पड़ेगा। और अगर अलग हटर करेगा तो आपकी पहचान भी अलग होगी, आपकी गणना भी अलग होगी। निश्चित तौर पर यू करनी चाहिए। और भाई बनाओ, मुझे जानो छू कि चौपाल छे, तो जाहिर सी बात छे गीत संगीत सुनबा को आपको भी मन होगो और मारो भी मन छे। आपन सुना चा यो गीत संगीत।
1: आज खेती का क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, वैज्ञानिक विधियां और नवीन कृषि

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

भाई बहनों, राम सिंह गुजर की आवाज में आपन ने मीठो राजस्थानी लोकगीत सुनो और आज अपना चौपाल को टर्म पूरा हो रहे। आज तो देव राजू भाई ने अनुमति चाला चा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम राजस्थानी।

आइए अब सुनते हैं गायक कलाकार भोजराज गोचर की आवाज में लोकगीत काया पिंजरा में पंछड़ो गावे गीत।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: आइए श्रोता आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। वन संरक्षण कार्यक्रम में शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा मानव वन्य जीव संघर्ष समस्या और समाधान। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे विशेषज्ञ श्री अनुराग कुमार भटनागर और श्रीमती प्रेम कंवर से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-2941142। एक अन्य कार्यक्रम संबंधी सूचना हमें प्राप्त हुई है। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 17 जून 2026 को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीकें और भ्रांतियां। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर सत्येंद्र अग्रवाल से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 17 जून 2026 को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-2941142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

संगीत में हम सुन रहे हैं सबसे पहले मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी का गीत, जिसे संगीत दिया है रवि ने और फिल्म है चौदहवीं का चांद। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

सुन रहे हैं अगला गीत, और अगला गीत है फिल्म मेरे जीवन साथी से, किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

चित्तपट संगीत की इस श्रृंखला में अगला गीत सुनाते हैं हम। इसे हमने चुना है फिल्म कन्यादान से। फिर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और नीरज का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत।

अगला गीत सुनाने जा रहे हैं फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की युगल आवाजों में गुलजार की गीत रचना और मदन मोहन का संगीत। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

चित्रपट संगीत में अगला गीत हम सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में, हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम है, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत है आर डी बर्मन का। लीजिए सुनते हैं गीत।

अगली फिल्म है बॉबी और गायक कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुन रहे हैं बॉबी फिल्म से ये गीत।

अगला गीत सुनने जा रहे हैं फिल्म सौतन से लता मंगेशकर किशोर कुमार की युगल आवाजों में, सावन कुमार की गीत रचना और उषा खन्ना का संगीत। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

0: तट पे।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM 102 मेगाहर्ट्ज और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री

0: शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण

0: ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज का फिल्म संगीत आधारित है कलाकार मिथुन चक्रवर्ती पर। कुछ ही देर में प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

जी हाँ, फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत आई एम अ डिस्को डांसर, उस जमाने में हर बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गीत हुआ करता था। यह है विजय बेनेडिक्ट और उनके साथियों की आवाजों में फारूक कैसर का गीत और बप्पी लहरी का संगीत। आइए सुनते हैं वही गीत।

तो श्रोताओं, ये हैं हमारे आज के सितारे मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जुनून सच्चा है तो रंग रूप गरीबी हालात किसी इंसान को नहीं रोक सकती। तो आज के हमारी जो कहानी है, उस कहानी में ये हैं हमारे डिस्को किंग। जी हाँ, इन्हें डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें महागुरु कहा जाता है। ये करोड़ों दिलों की धड़कन रहे हैं। दोस्तों, आज जिन्हें हम मिथुनदा कहते हैं, उनका असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती। उनका जन्म 16 जून 1950 को

कोलकाता में हुआ। उन्होंने पढ़ाई की, विज्ञान में स्नातक किया और बाद में पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभिनय की शिक्षा ली। लेकिन ये सारा सब कुछ इतना आसान नहीं था। युवावस्था में वे पश्चिम बंगाल के उथल पुथल भरे दौर में नक्सल आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। बाद में परिवार में जब दखलंदाजी नक्सलवादियों की बढ़ती चली गई और व्यक्तिगत जब उन्हें नुकसान महसूस होने लगे तो उनका मन खिन्न हुआ। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जिंदगी इस तरह से तो नहीं जी जा सकती, और उन्होंने तभी कला का सहारा लिया। उन्होंने कला को चुना, उन्होंने चुना कि दुनिया का रास्ता कला से होकर भी गुजर सकता है, और इसी के रहते सिनेमा जगत में उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी। आइए सुनते हैं इनका, इन पर फिल्माया गया एक और गीत जो इसी फिल्म से लिया गया है।

श्रोताओं, जब मिथुन चक्रवर्ती जी थोड़े बड़े होते हैं तो वो पहुंचते हैं मुंबई। ना तो कोई उनका गॉडफादर था तब, और न ही कोई ऐसा शख्स जो फिल्मी परिवार से जुड़ा रहा हो। कई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसे भी दिन देखे जब उनके पास में छत नहीं थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार तो कहा जाता है कि उन्हें फुटपाथ पर भी रातें गुजारनी पड़ी। कल्पना कीजिए,

ऐसी शख्सियत, एक युवा लड़का जिसकी जेब खाली है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं और सामने बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सा दरवाजा। अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि हाथ में कुछ है नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन मिथुन दा, उन्होंने हार नहीं मानी। वो निरंतर प्रयास करते रहे। आइए सुनते हैं अगला गीत। यह फिल्म प्यार झुकता नहीं से, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाजों में, SH बिहारी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: श्रोताओं, बात करते हैं 1976 की। 1976 में एक निर्देशक हुए हैं मृणाल सेन, उनकी फिल्म मृगाया इन्हें मिलती है। और दोस्तों, वो फिल्म में जब काम करते हैं तो एक इतिहास रच डालते हैं। पहली ही फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। सोचिए, जिस लड़के के पास काम नहीं था वह अपनी पहली फिल्म में देश का सबसे बड़ा अभिनय सम्मान जीत चुका था। ये तो शुरुआत थी और बहुत बहुत बड़ी। कहते हैं ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपना सब कुछ लगा देता है उस थोड़े से कुछ को पाने के लिए, और जब वो अपने पूरा मस्तिष्क, हृदय और अपनी आत्मा के साथ मिलजुल कर काम करता है तो जो वो सोचता है, जिसे वो पाने की इच्छा रखता है, वो मुकम्मल हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत। ये गीत हमने चुना है फिल्म डांस डांस से, विजय बेनेडिक्ट और अलीशा चिनॉय की आवाजों में, बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में बना। लीजिए सुनिए गीत।
1: चांद पर ले जा रहे हैं, ये देखिए ये रॉकेट। इस रॉकेट से एक खूबसूरत महबूबा अपने महबूब के साथ चांद पर उतरकर प्यार की मस्ती में डांस करेगी।

0: तुम्हें दूसरी दुनिया में लेकर चलते हैं, वीनस।
1: वीनस?
2: 7, 6, 5, 4, 3,

श्रोताओं, अब बात करते हैं 1982 की। 1982 में हम जब आते हैं तो उस समय एक फिल्म आती है, डिस्को डांसर। इसके गीत हम पहले सुन चुके हैं। इस फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं पर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके दो मशहूर गीत हुए, आई एम अ डिस्को डांसर और जीमी जीमी आजा आजा। इन गानों ने ऐसा जादू चलाया कि भारत से लेकर सोवियत संघ तक मिथुनदास सुपरस्टार बन गए। आज भी रूस और कई पूर्व सोवियत देशों में मिथुनदास का बहुत बड़ा नाम है और उन्हें सम्मान के साथ नवाजा जाता है। इन्हीं गीतों के साथ एक गीत और आया बीच में, जो कि इन पर फिल्माया गया। बड़ा खूबसूरत सा गीत है जिसके धुन को, जिसकी तर्ज को लोग पकड़ते हैं और झूम उठते हैं और उसके मायने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। आइए उस गीत को गुनगुनाते हैं कुछ लोग। वो दिल को छू जाने वाला गीत है जिसे महसूस कर सकते हैं। साहित्य के जगत में देखें तो उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट कही जा सकती है। दरअसल ये मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज पर फिल्माया गया गीत है। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, जिहाल मिस्किन मुकुंब रंजिश। वैसे ये महान कवि अमीर खुसरो की एक खूबसूरत सी कविता है, उसको आधार मानकर गुलजार साहब ने अपनी लेखनी से इस गीत को मुकम्मल किया। वैसे तो अमीर खुसरो ने कविता ब्रज भाषा और फारसी को मिलाकर लिखी थी, और जिनकी खूबसूरत पंक्तियां कुछ इस तरह की थी, जैसे जिहाल मिस्किन मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार मेजा न लेहु काहे लगाए छतियां। लेकिन जब हम इसके मायने निकालने बैठते हैं तो इस रचना का मतलब बड़ा ही खूबसूरत सा निकल करके आता है। बातें बनाकर आंखें चुराकर मेरी बेबसी को अनदेखा न करो, जुदाई की तपन से मेरी जो है सांस छूटी जा रही है, मुझे अपने गले से लगा लो, समथिंग लाइक ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकल कर आता है। इस रचना से प्रेरित होकर गीतकार गुलजार साहब ने गुलामी फिल्म के इस गाने की कुछ पंक्तियां इस तरह से लिखी। आइए सुनते हैं ये पंक्तियां।

दोस्तों, उस दौर में जब बड़े बड़े सितारे आलीशान हीरो की छवि बनाते थे, मिथुन आम आदमी का हीरो बने। उनके चेहरे में आम भारतीय दिखाई देता था। उनकी सफलता ने लाखों युवाओं को विश्वास दिलाया कि हीरो बनने के लिए गोरा रंग नहीं चाहिए, कोई फिल्मी खानदान जरूरी नहीं है, बस एक जुनून काफी है। 1980 और 90 के दशक में मिथुन दास ने इतनी फिल्में की कि निर्माता उनके पीछे लाइन लगाते गए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी सैकड़ों फिल्मों में काम किया, और इसी तरह उनके खाते में 350 से भी अधिक फिल्में आ गई। कई लोग मिथुन दास को सिर्फ डिस्को स्टार समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वे एक शानदार अभिनेता हैं। उन्होंने तहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। यानी एक तरफ डिस्को डांसर और दूसरी तरफ गंभीर अभिनय, ये संतुलन बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता है, और यही वो काबिले तारीफ भी है। हर सितारे की जिंदगी में एक कठिन समय जरूर आता है। 1990 के दशक के मध्य में मिथुन दास की कई फिल्में लगातार असफल रही। कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दर्जनों फ्लॉप फिल्मों का भी दौर देखा, लेकिन यही वह जगह है जहां उनका असली व्यक्तित्व दिखाई देता है। उन्होंने हार नहीं मानी, काम करते रहे, संघर्ष करते रहे और वापसी भी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन दास ने होटल व्यवसाय में भी बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और मनोरंजन जगत से बाहर भी पहचान बनाई। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, और इसी के साथ लेते हैं हम अगला गीत जो इन्हीं पर आधारित है। ये गीत है फिल्म मुद्दत से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, इंदिवर की रचना और बप्पी बैरी का संगीत।

आइए श्रोता, हम बात करते हैं उनकी कुछ हिट फिल्मों की और उनकी उपलब्धियों की। 1976 में उन्हें मृगया फिल्म से नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर के रूप में मिला। डिस्को डांसर उनकी जो फिल्म थी 1982 में बनी, जो विश्व स्तर पर बहुत हिट रही और उनके लोकप्रिय डांस स्टाइल को सबने बहुत बहुत सराहा। प्यार झुकता नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, ये कुछ ऐसी पारिवारिक हिट फिल्म रही थी जिन्होंने इन्हें बहुत बहुत प्रसिद्ध कर दिया। साथ ही हम देखते हैं फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इन्हें अवार्ड मिलता है फिल्म अग्निपथ के लिए, जो कि 1990 में बनी। फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का भी इन्हें अवार्ड मिलता है और वो अवार्ड मिलता है फिल्म जल्लाद के लिए, जो कि 1995 में बनी थी। मिथुन दा ने मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों के अलावा, जैसे कि बताया कि बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तमिल, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया था। तो हम देखते हैं कि उन्हें मृगया, ताहदेर कथा और स्वामी विवेकानंद के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है और फिल्म फेयर पुरस्कार अग्निपथ और जल्लाद के लिए मिला। साथ ही हम देखते हैं कि उन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है और 2007 में उन्हें स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मिथुन दा ने 2014 में टीएमसी ज्वाइन की और 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और फिर हम देखते हैं कि वे 2021 में भारतीय

कि जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रचार में बहुत सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा वे मोनार्क ग्रुप के मालिक हैं और जो हॉस्पिटलिटी और होटल व्यवसाय में काम करता है। उनके पास मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऊटी और अन्य बड़े शहरों में होटल हैं। साथ ही हम देखते हैं कि मिथुनदा ने डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे रियलिटी शोज में ग्रैंड जज के रूप में काम किया है। यहीं से वो आज के युवाओं में भी बहुत चिरपरिचित हो गए हैं। वे फुटबॉल को बढ़ावा देने में सक्रिय रहे और बंगाल फुटबॉल अकादमी की स्थापना में भी उन्होंने काफी मदद की। वर्तमान में टीवी रियलिटी शो हुनरबाज में जज के रूप में सक्रिय हैं और सीमित समय के लिए फिल्मों में भी कैमियो करते रहते हैं। उनके डांस स्टाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके हिट स्टेप्स नए जनरेशन के बीच में आज भी लोकप्रिय हैं। तो ये हैं हमारे आज के मुख्य कलाकार मिथुन चक्रवर्ती। आइए चलते चलते सुनते हैं इनका एक और गीत, और ये गीत हमने लिया है फिल्म जल्लाद से, विनोद राठौड़ और सपना मुखर्जी की आवाजों में। ये गीत है आंखों में क्या है।

आज का ये फिल्म संगीत खास था मिथुन चक्रवर्ती जी के लिए। जन्मदिन है आज उनका, तो आज उनको शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत विशेष रूप से मिथुन चक्रवर्ती पर आधारित अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत आपकी रेडियो साथी भावना को। नमस्कार।

FM 102.03.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ

दिल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगीं, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कनें गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, विचरती रहती है।

0: खूबसूरत।
1: उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

0: FM 102.03.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज

0: नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Makinam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors,

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपए भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।

0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा। पर भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी

0: बिना चले तो वो जो वायु में जो तत्व है जिसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत

0: करने में, इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
0: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस

0: द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां

0: मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पे उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड

0: हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे, कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:39:17 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम हाजिर हैं सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा आमतौर पर 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दौर 1965 तक का है। इस दौर में कहानी, संगीत, अभिनय, सामाजिक विषयों और सिनेमाई कला ने नई ऊंचाइयां छुई। इसे हिंदी फिल्म उद्योग का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। उसी दौर से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ चुनिंदा नगमों को जो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। उन्हीं नगमों में से एक नगमा सबसे पहले फिल्म चोरी चोरी से, और यह फिल्म आई थी 1956 में, जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने और जिसको लिखा था आगाजनी कश्मीरी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया नरगेश, राज कपूर, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड, मुकरी, राज मेहरा, जॉनी वॉकर, इंदिरा बंसल वगैरह ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है दरअसल शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:44 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।